क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देखकर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है।
पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते है राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिरादी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

का ये अक्षर बस जाता है, क्योंकि इंसान ही नहीं खुद कृष्ण भी

इतना प्रेम है राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वप्न में भी

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन

वेदना होती है, पीड़ा होती है। यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहां बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

0: तुझे पलक। आज सोशल मीडिया सिर्फ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, कई बार वही हमारे मूड और कॉन्फिडेंस को भी डिसाइड करने लगता है। लेकिन क्या ये हेल्दी है? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। और आज इसी डिजिटल वैलिडेशन पर बात करेंगी मेरे साथ बीके ज्योति जी एंड बीके प्रिया जी। वेलकम मॉम।
1: ओम शांति।
2: गुड मॉर्निंग
0: ज्योति जी। हम जब भी सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करते हैं और उस पे अगर लाइक्स कम आ जाएं या व्यूज कम आ जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्या हमने अपनी वैल्यू को लाइक्स और व्यूज से मेजर करना स्टार्ट कर दिया है?
1: आज की डेट में कहें तो ये बिल्कुल राइट बात है कि आज लोग लाइक्स और फॉलोअर्स और जितनी हम रील्स बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि लोग हमें लाइक्स दें, क्योंकि जितने लाइक्स जाएंगे उतनी ही फिर हमारे फॉलोअर्स भी जितने बढ़ेंगे हमारी इनकम उतनी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी होती है वो इसलिए नहीं है कि लाइक्स कम आ रहे हैं, कई बार इसलिए भी होती है कि हमारी शायद इनकम अब कम हो जाएगी। तो अगर हम लोगों के ऊपर, पहले तो मैं अपना अगर व्यू मेरा जानना चाहें तो ये रील्स में हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं। लोगों के बीच में खुद उतर कर देखें, ना कि इन रील्स में फंस जाएं। अपने जीवन को ऐसा बेहतरीन बनाएं कि लोग आपके जीवन को लाइक करें, ना कि आपकी रील्स को।
0: बिल्कुल।
1: और रील्स के अनुसार ही हमारी जिंदगी नहीं है, और हम अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें लाइक्स कितने मिल रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेबल हैं। और ये सारी चीज़ें, डिपेंडेबल चीज़ें जितनी भी होंगी, अगर मेरी खुशी किसी पर डिपेंड करती है तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे बिजी रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं है उनके पास टाइम और अपने ही कामों में बिजी है। तो ज़रूरी नहीं कि जितने लाइक्स हैं तो हमें वो, हमने रील अच्छी बनाई है या हमने बहुत, अगर मेरे को लाइक्स कम मिल रहे हैं तो रील खराब बनाई है। हम अपना बेस्ट देने का अगर बना ही रहे हैं तो बेस्ट दे, लेकिन उससे अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करें, अपने मूड को खराब नहीं करें। अपना मूड आपके अपने हाथ में है। कोई भी व्यक्ति आपको बेस्ट आप दे रहे हैं, आपको खुद को फेथ होना चाहिए कि मैंने जो दिया है वो बेस्ट दिया है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तुझे पलक। सोशल मीडिया पर हम सिर्फ अपनी लाइफ शेयर नहीं करते, उस पर मिलने वाले रिएक्शंस का भी वेट करते हैं। प्रिया जी, पोस्ट करने के बाद बार बार लाइक्स और कमेंट चेक करना एक्साइटमेंट है या वैलिडेशन की नीड?
1: बिल्कुल, ये एक हैबिट ही हो गई है और ये हैबिट जो हमने खुद डेवलप की है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है और हर नोटिफिकेशन हमें लगता है कहीं हमारे लिए हमारी शेयर जो कहीं शेयरिंग हुई है, लाइक्स मिले हैं, तो हम उसको चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि मुझे मेरी अप्रोच कहाँ तक जा रही है, मेरी लाइक्स कहाँ तक बढ़ रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर एक व्यक्ति लाइक करे, तो इसलिए मेरा सबसे ईजी एक्सेस क्या है? सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में मैं अपना कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ और हर पल अगर मैं सेकेंड बाय सेकेंड चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ डिपेंड हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इंटरनली फुलफिल हूँ, इंटरनली आई नो माई पर्सनैलिटी इज़ वेरी स्ट्रांग और मैं बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखती हूँ, तो मुझे इस तरह की डिपेंडेंसी या इस तरह की नीड नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ की अगर मिनट मिनट पे, हर सेकंड सेकंड पे मैं अगर मोबाइल टटोल रही हूँ, तो ये धीरे धीरे मुझे एक तरह की एडिक्शन में लेकर जा सकता है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: गाइस वन मोर सेल्फी।
1: हर याद हम फोन में सेव कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी उन हीरोज के लिए भी कुछ किया जो हर दिन हमारी खुशियों की सिक्योरिटी करते हैं? इस इंडिपेंडेंस डे एक सेल्फी नहीं, एक लेटर लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें भेजिए और हम उसे सोल्जर्स तक पहुंचाएंगे। सबमिट एट रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए @ रेडियो महारानी 89.6।

0: दिन में खाना तो अच्छा होगा।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शियर सब बंद पैंट।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: नया नजरिया विद आरजे पलक।
4: हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के रिस्पॉन्स से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही ना मिले तो क्या खुशी भी कम हो जानी चाहिए? ज्योति जी, अगर लाइक्स और फॉलोवर्स का काउंट ही ना दिखे तो क्या हम फिर भी सोशल मीडिया पर उतने ही एक्टिव दिखेंगे जितने पहले थे?
5: अगर मेरी बात करें तो मैं तो वही करूँगी, और इसका कि उतनी खुशी रहेगी क्योंकि उसमें

0: फॉलोअर्स या लाइक्स के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपनी यादों को संजो रहे हैं। हमने जो भी अपनी यादें ली वो इंस्टा पे हमने अगर कोई अकाउंट बनाया है या रील बनाई या फेसबुक पे कुछ डाला भी हमने, तो ज़रूरी नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, लाइक्स के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी कुछ यादों को, अच्छे पलों को संजो के रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो इन केस अगर वो हट जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मेरे ही यूट्यूब मतलब जो व्हाट्सएप से सारे ही मैसेजेस और सब कुछ डिलीट हो गया क्योंकि उसको रीइंस्टॉल कर दिया। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट्स भी उसमें चीज़ें थी जैसे स्टडीज से रिलेटेड थी, उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन उसमें मूड ऑफ नहीं हुआ। ये स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी थैंक्स है कि जिसके द्वारा ही हम उसको रोक पाए कि नहीं ये जरूरी नहीं। हाँ, ऑप्शन ढूंढा कि वो चीज़ मुझे कहाँ से फिर मिल सकती है, तो वो जहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वो चीज़ दोबारा आ नहीं सकती, तो मैं उसके बिहाफ पे अपनी खुशी क्यों जो कहीं गंवा दे, अपनी खुशी को क्यों हम छोड़ दे। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें एक दिन खत्म हो जाने वाली है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये चीज़ बड़ा अच्छा सिखाती है कि कुछ टाइम के बाद कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। जब हम ही परमानेंट नहीं है तो फिर ये चीज़ें परमानेंट कैसे रह सकती है। तो हमारी इन चीज़ों पर खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी हमारी अपनी यादों में है। अगर वो पल हैं, बहुत अच्छे पल भी हमने बनाए हैं, तो मेरी यादों में तो रहेंगे ही सदा, चाहे हम इंस्टा से हट जाएं या फेसबुक से हट जाएं, लेकिन मेरी यादें जब भी हम उसको याद करेंगे तो मेरे चेहरे पर वो खुशी जरूर आएगी।
2: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: डिजिटल दुनिया का हिस्सा रहना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से अपनी वैल्यू भूल जाना नहीं। प्रिया जी, अगर हैप्पीनेस सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स पर डिपेंड हो जाए तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें?
1: ये बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी उस साइकिल में कहीं कहीं फंसे ही चले जा रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही, जो हम देखते हैं कि छोटा बच्चा दूध भी पी रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसे मोबाइल चाहिए, कुछ ना कुछ रील्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो इससे निकलना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और उसके लिए मैं तो ये कहूँगी कि हम सबसे पहले जो मेरा हॉबी है या जो मेरा पैशन है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। अगर मेरे को गार्डनिंग है या ट्रैकिंग का है तो गो विदाउट द मोबाइल, एंड इफ मोबाइल इज नेसेसरी देन टेक इट, लेकिन उसको उतना ही यूज करें जितना यूजफुल हो सकता है। और मेडिटेशन का कंसेप्ट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं कहूंगी थोड़ा मेडिटेशन हम जरूर करें। वो मेडिटेशन आप कैसा भी, कहीं भी, कभी भी करें, चाहे वो किसी भी रीति का करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन आपका सेल्फ वर्थ आपका इंक्रीज करता है। आपकी आंखों में आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगती है, आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं। वो फिजिकली नहीं होता है लेकिन इंटरनली होता है।
0: बीके सिस्टर, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति। थैंक यू
0: दोस्तों। लाइक्स और फॉलोवर्स आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं, आपकी वर्थ नहीं। अपनी वैल्यू का मेजर थोड़ा दुनिया से हटाकर खुद के अंदर भी देखिए। फिर मिलेंगे नया नजरिया में एक और नए टॉपिक और नए नजरिए के साथ। बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: तुषार एक बात सच सच बता कि तुझे नहीं लगता कि मौसम बड़ा ही बेईमान हो रहा है, कभी तो मेहरबान हो रहा है तो कभी बेईमान हो जा रहा है।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: देखिए मौसम बेईमान से तो हम बाद में बातचीत करेंगे, फिलहाल ये आप क्या बेईमानी कर रहे हो, चेहरा कहीं छुपा के घूम रहे हो, चेहरा दिखाओ भैया, क्या हो गया है?
0: चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा क्योंकि
2: अरे ऐसा भी क्या
0: गला खराब है वो शायद सभी पब्लिक को पता है, क्योंकि मैं कल भी ये बता के गया था राखी वाले दिन भी ऐसी हो, मेरे साथ उससे एक दिन पहले भी यही हुआ। और वीकेंड पर जब गला खराब होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, तुझे तो समझ ही आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं।
2: ठंडा पानी नहीं पी पा रहे हो, यही कहना चाह रहे हो?
0: गर्मी है ना तो ठंडा पानी कैसे पीऊंगा।
2: हाँ वही तो, थोड़ी ठंडी वाली चीजों से थोड़े टाइम दूर रहो, एसी ना चलाओ, कूलर वूलर के सामने मुंह खोल के ना खड़े हो जाओ, आवाज करते हैं बचपन में तो वो वाली चीजें थोड़ा कम करो। फिलहाल ये जो मौसम एकदम से बदल रहा है तो ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस भी लेके आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये एसी से निकल के तुरंत गर्म जगह जाने से, गर्म से तुरंत एसी में, ये जो एक हमारी लाइफ का फ्लक्चुएशन हो चुका है, हमें इसे कंट्रोल करना है।
0: एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने रनिंग करने गया, तुझे पता है नया शौक चढ़ा मुझे
2: 5 किलोमीटर एक दिन
0: तो मैं 5 किलोमीटर एक दिन रनिंग करके आया और मैं सीधे जाती एसी के सामने खड़ा हो गया। बस वहीं से मेरा पूरा माहौल बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एंड एक दिन बुखार भी रहा मुझे, बट अभी ठीक हूं मैं। और जहां तूने बात करी कि बीमारी चल रही है, बीमारी में वायरल इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, मगर उसके अलावा एक और बीमारी है जो फैल रही है,
2: वो अभी नहीं, थोड़े गाने सुना देते हैं, अभी अभी तो आए हैं यार, थोड़ी सांस तो इनको भी लेने हैं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ जैसे तूने बोला कि ठंडी जगह पे जाना है तो ठंडी जगह वाला ही गाना है, दिल्ली से मनाली, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, हमें रेडियो के
2: जी ठीक।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: ये गाना एक मैशअप था और मौसम भी इसी तरह मैशअप हो रखा है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी एकदम से हमारे सामने आ जा रही है।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: बिल्कुल मैशअप हो रखा है, एक बीमारी जा रही है तो दूसरी आ रही है, दूसरी जा रही है तो तीसरी आ रही है, और ऐसी बीमारियों का माहौल चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, कहीं डेंगू तो कहीं वायरल तो कहीं पर।
0: वो कौन सा बता रहे थे आप, एक वो कौन सा जो आपको हो रखा है थोड़े थोड़े सिम्टम्स के साथ?
2: मुझे नहीं हो रखा, मुझे हो रखा होता तो शायद तो अभी मेरे साथ नहीं होता। हम लोग बात कर रहे हैं H1N1 की। पता है तुझे शास्त्रों में लिखा गया है जब शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी करनी चाहिए।
0: ये पहले डिकोड करो H1N1 ये क्या बता रहे हो, इतना साइंटिफिक बात ना करो।
2: ठीक है, H1N1 वायरस इज लाइक स्वाइन फ्लू, और जिसकी बात अक्सर करी जाती है, लोग कहते हैं कि सुअर से फैलता है, बट ऐसा अभी तक बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुआ है, बट हाँ इंसानों के अंदर भी बहुत तेजी से फैलता है।
0: अच्छा, इसीलिए मास्क लगा के आए हो?
2: बिल्कुल, मैं मास्क इसलिए लगा कर आया हूँ क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी ऐसे ही फैलता है, बस डेंगू ऐसे नहीं फैल सकता। डेंगू की जो बीमारी है वो सिर्फ एक मच्छर के काटने से होती है,
0: और वो मच्छर को जगह तो हम ही लोग दे देते हैं ना, गंदगी फैला के, गंदे पानी को स्टोर करके, बहुत सारी चीजें ऐसे करके।
2: ट्विस्ट है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है।
0: बैगन,
2: और बैगन, बैगन में एक और चीज याद आई मुझे कि 9 दिन तक अगर आपके घर के आसपास साफ पानी जमा हो रखा है तो मच्छर का अंडा लार्वा से निकलकर पूरा मच्छर में तब्दील हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर।
0: कब पढ़ा था ये सब प्रोसेस, कहाँ से रिसर्च कर रहे हो?
2: मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ चीजें, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि सिर्फ वीडियोस देख कर आ जाऊँ ऑनलाइन, पढ़ता भी ज्यादा हूँ। तो
0: ये जो इनडायरेक्टली आपने
2: तंज मारा है,
0: तंज, वाओ, हाँ, हिंदी कोश भी अच्छा कर रहे हो अपना।
2: तो इधर ही इर्द गिर्द बातें करेंगे और ऐसे ही हिंदी के शब्द इस्तेमाल करेंगे, और रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजाएंगे। हम है रेडियो के
0: जी टी, यानी गौरव और तुषार।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: ओहो वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा सुन।

0: साल 2026 में एक विद्वान आदमी ने कहा था कि इस साल तो दुनिया खत्म है, और फिर उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी।
1: गौरव तुषार,
2: देखिए दुनिया खत्म होगी नहीं होगी ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बट दुनिया में जो अलग अलग तरह से डिजास्टर्स आ रहे हैं वो इस टाइम हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी बात सच तो नहीं थी।
0: और बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं वॉर हो रहा है तो कहीं नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है नेचर ना हम लोगों को बार बार ये चीज़ याद दिला देता है कि मैं तुमसे कई ज्यादा बलवान हूँ, तो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत भी मत करना।
2: छेड़छाड़ चैलेंज ना करो मुझे। हम लोग अक्सर ये करते हैं ना, चैलेंज कर देते हैं, अरे बना लेंगे क्या होगा, ये करके देख लेते हैं हो जाएगा। नेपाल फ्लड इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आप देखिए ना, डेवलपमेंट के लिए वहां पर चीजें बनाते जा रहे थे, एकदम से एक दिन ऐसा आता है कि वो जितनी बनाई हुई चीजें थी सब मिट्टी हो गई।
0: और इसी के साथ साथ बहुत सारी कैजुअलिटीज भी है, बहुत सारे लोग लापता है। एग्जैक्ट कैजुअलिटी का नंबर अभी नहीं सामने आया है। विदेशी नागरिक 500 थे, जिनमें से
2: इंडियंस कितने थे, 300 के लगभग वहां पर इंडियंस थे। और एक वीडियो ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक इंसान अपने घर की छत पे फंस गया था क्योंकि हाँ। उसका रास्ता पूरा चला गया, तो वहां पर आर्मी जो वहां की है वो गई हेलीकॉप्टर लेके और उसे रेस्क्यू करके लाई है। तो लोगों को इस तरह से भी रेस्क्यू करा जा रहा है वहां पर।
0: और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पर ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। और इसी के साथ साथ अभी इस कठिन समय पर मेरे ख्याल से इंडिया खड़ा है अपने नेबरिंग कंट्री नेपाल के साथ।
2: बिल्कुल, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं ना कि जब कोई भी कंट्री में ऐसा कुछ हो तो उनकी हम जितनी मदद कर सके, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे इमरजेंसी किट्स को लेके हो, या जो भी हमें वहां पर नीडफुल होता है हम करते हैं हर बार।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आपके साथ रेडियो के जीटी है ही। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया में ये पानी नहीं आया है, तो मेरे यूपी बिहार के दोस्त भी ये गाना गा रहे हैं।
3: तू आ

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है बिग बॉस।
1: गौरव तुषार रेडियो के जीपी, हर पल फुल ऑन धमाल।
2: देखो हर्ट तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी हो रहा होगा 89.6 रेडियो महारानी पर। यहाँ पर है रेडियो के जीटी यानी गौरव और तुषार आपके साथ। और हर्ट क्यों ना, आप एक बात बताओ, इतने सारे लोग इतने साल से ट्राई कर रहे हैं कि वो बिग बॉस में एंट्री लें, बिग बॉस हो जाएं, बट बिग बॉस 20 में एंट्री कौन ले रहा है? जिन्होंने जेंजी प्रोटेस्ट में गाड़ी रोक दी थी हाथ लगा के, और वो बिग बॉस के अंदर आ जा रहे हैं। और लोग इतने साल से इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं कि एक बार बिग बॉस बुला लेना हमको।
3: और बिग बॉस में जाने के बाद काफी सारे लोगों की किस्मत बदल भी जाती है, और काफी सारे लोगों की किस्मत दूसरे वे में भी बदल जाती है कि वो हिट से भी फ्लॉप हो जाते हैं।
2: हाँ, तो वो आपके बिहेवियर के ऊपर होता है, अंदर जाके कैसे कर रहे हो। बट आर्यन केल्विन, ये एक नाम आपने सुना है?
3: बिल्कुल।
2: बोलते हैं अगर इनका नाम आप ले लो अगर इंस्टाग्राम रील पे, तो आपकी रील वायरल हो जाती है। ये बिग बॉस के अंदर आ रहा है, तो बिग बॉस वायरल होगा
3: चुका है।
2: हाँ, मतलब वो बोल रहे कि आ रहा है। उसके अलावा जैन सैफी, उसने तो खुद ही वीडियो बना के बोल दिया है कि मैं ऑलरेडी फेमस हूं, मुझे क्या ये फेमस करेंगे, तो एक वो वाला। बट बीच में रूमर से आ रहा था आशीष चंचलानी आ रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ अगर प्लान भी करा तो कैंसिल कर दें,
3: मुझे नहीं लगता आशीष चंचलानी जाएगा।
2: बस मैरी कॉम आ रही है, ये कंफर्म है।
3: अरे वाह, तो चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और ये कब तक रिवील हो जाएगा।
2: ये रिवील क्या हो जाएगा, शो ही आ जाएगा 6 सितंबर से।
3: तो 6 सितंबर को हम लोगों को सबको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए चला रहे हैं कुछ गाने।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: हाँ, निवाना

0: जिस हिसाब से साउथ इंडियन गानों का मिक्स मैशअप था, उसी हिसाब से अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि साउथ इंडिया के एक सुपरस्टार है जिनका नाम होता है यश। भाई इस बंदे की मूवी आई 26 तारीख को, वेंसडे को रिलीज कर दी गई, और फिर उसके बाद सोचा था कि बहुत ज्यादा कमाई कर लेगी। कमाई तो कर ली, बट एप्रिसिएशन की जगह कुछ और बटोर रही।
1: गौरव तुषार,
2: मैं ये जानना चाहूंगा अगर यही मूवी इनको लॉन्च करनी थी तो पहले डेट क्यों कैंसिल करी थी? तब भी नहीं चलनी थी, अब भी नहीं चल रही है, धुरंधर के साथ ही रिलीज कर देते।
0: धुरंधर के साथ क्या, दो बार पोस्टपोन करी गई थी ये मूवी।
2: क्यों? क्योंकि बैड एक्सपीरियंस देना था इतना। लोग कह रहे हैं एक चीज बढ़िया है मूवी में,
0: क्या?
2: सीट्स जहां वो बैठे थे।
0: लोग कह रहे हैं कि टॉक्सिक नहीं है बट 3 घंटे का टॉर्चर है, टॉक्सिक टॉर्चर है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरी एडवाइस मानो कि मत जाओ देखने के लिए, आप लोग खुश हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो फिल्म जब देखने जाना है ना तो एक अपना एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो तुझे शायद मटर पनीर पसंद होगी, है ना, मुझे भी पसंद है, शायद हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको नहीं पसंद हो।
2: पर क्या आपको खिचड़ी पसंद है? क्योंकि इस फिल्म में खिचड़ी है ना, तो एक्शन बहुत ज्यादा है ना तो रोमांस बहुत ज्यादा है, सबको ऐसे ब्लेंड किया है कि कोई भी चीज पूरी नहीं हो पा रही है।
0: अच्छा, तो इस मूवी में एक और चीज है जो कि था सबके सामने आ चुका है कि यश डुअल रोल में है।
2: लियो बैगन,
0: मतलब पिता और बेटे का रोल, दोनों का रोल इन्होंने निभाया है। गैंगस्टर है पिता और बेटा शायद शांगची बना क्योंकि शांगची मूवी में भी था, इसी तरह बाप गैंगस्टर था और बेटा सच्चाई की राह पर चला था।
2: पर मुझे लगता है यश को सब लोग कंपेयर भी कर रहे होंगे ना तो KGF से कर रहे होंगे, इसलिए भी ये मूवी हो सकता है अच्छी ना लगे।
0: तो हो सकता है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती है, मैं तो इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा एक्स्ट्रा। बट हाँ, आप लोग बताइए, आप लोगों ने मूवी देखी है नहीं देखी, और इसको बताने के लिए आप आ सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल पर।
2: मैं मिल जाऊंगा इट्स आरजे तुषार के नाम से,
0: और आरजे गौरव के नाम से मैं मिल जाऊंगा रेडियो महारानी पर, जाइए दोनों इजीली मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर सुनिए इस गाने को, मैं हूँ गौरव,
2: मैं हूँ तुषार,
0: और आप सुन रहे हैं
2: रेडियो के GT।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: मैं भी रिसेंटली एक मूवी देख के आया हूँ, मूवी नहीं कहूंगा मैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उसको कहूंगा। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रहे हो।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: एंड वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बट कैसे कर सकते हैं?
0: कैसे क्या कर सकते हैं, थिएटर जाइए, मूवी देख के आइए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है हनुमान अंश, और ये नीम करौली बाबा के ऊपर बेस्ड मूवी है। और उनने अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी थी, कि वो अपना घर कितनी छोटी उम्र में छोड़ के चले गए थे, और फिर कैसे उन्होंने जीवन
2: जीवन यापन किया।
0: हाँ, इतनी शुद्ध हिंदी में आपसे सीख रहा हूँ ना, इसलिए क्लास लेता रहता हूँ, व्यापन किया, उसके बारे में पूरी जर्नी है। और एक बड़ा ट्विस्ट जो इस मूवी में मुझे पता चला, बाबा की शादी हुई थी।
2: बिल्कुल, ये तो मुझे पहले से पता था।
0: मुझे नहीं पता था
2: तो ये चीज इसको नहीं पता था, बट मुझे पहले से पता था। और मैं तुमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और पब्लिक को भी बताना चाह रहा हूँ कि नीम करौली बाबा जी जो थे वो हमारे गांव भी आए थे।
0: आपके गांव?
2: बिल्कुल।
0: क्या
2: चीज, धाम हमारे गांव से बहुत पास। अच्छा। है 50-60 किलोमीटर है। एंड उस टाइम वो गाँव गाँव जाते थे ताकि उन्हें अपने लिए वो चाहिए थे, शिष्य चाहिए थे उनको। तो उन्होंने हमारे दादाजी से बात करी थी और बोला था कि हम, मतलब हमारे ताऊजी को बोला था कि इनको मेरा शिष्य बना दीजिए और मेरे साथ भेज दीजिए कैची धाम पे। एंड हुआ ये कि दादाजी ने मना कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा दादाजी गुस्से वाले थे। एंड दादाजी ने उनकी पूरी सेवा करी और बट बोला नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। एंड ये चीज़ अभी रिसेंटली मुझे पता चली, एंड आई वॉज लाइक सीरियसली ऐसा भी कुछ हुआ। और सवाल ये है तुषार, अगर तेरे को जाने का मौका मिले, मान लेते तू उसी टाइम पे है और तेरे को जाने का मौका मिलता, तो तू क्या जाएगा? सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के, अपनी पूरी फैमिली त्याग के जाना। बट
0: मतलब ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है, लाइफ वाली वो चीज़ है, तो हर एक इंसान तुरंत तो डिसीजन नहीं
2: ले सकता।
0: या तो आपके साथ जैसा कुछ हुआ हो, बाबा की लाइफ में क्या हुआ था ये मूवी के अंदर बखूबी दिखाया है, क्यों वो इस राह पे गए थे।
2: तो इसी के साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, इसमें एक गाना है, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान। यार क्या अमेजिंग गूज़बम्स आ जाते।
0: लेकिन वो आपको पता है, गाना हम लोग ये नहीं कहेंगे कोई बहुत प्रोफेशनल सिंगर है, वो एक ऐसे सिंगर है जो रियलिटी गाने की होती है ना, वो रियल लाइफ गाते हैं
2: और बिल्कुल सड़क पर घूमते हुए वो ये गाना गाते हैं। एक हाथ पे तुम भी कह सकते हो उसको, उस इंस्ट्रूमेंट को तुम भी बजाते हुए। और
0: सोचिए जो डायरेक्टर, उन्होंने टैलेंट कहाँ से पिक किया है,
2: कहाँ से पिक किया है। एंड आई गेस उनमें एक कैरेक्टर है जो कि शायद तुम्हारे दोस्त भी है।
0: हाँ, वो मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ थिएटर करते क्या, मेरे को थिएटर में सिखाते थे। okay. और 9 साल बाद जब मैंने उनको मूवी में देखा तो मुझे लगा भाई स्ट्रगल तो है।
2: बिल्कुल है, तो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। बाबा की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था, मगर उन्होंने सारे स्ट्रगल, सारे ऑड्स को पार किया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर एहसास दिलाते जैसे वो अभी भी हमारे बीच है। तो चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, क्योंकि हम लोग चलाते ही अच्छे गाने हैं। एंड वी आर
0: रेडियो के जीडी, यानी गौरव एंड तुषार।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।
2: कभी किसी से न प्यार करना, नौजवानों बात मानो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: गाना तो था मैं डर दी रब रब कर दी, कल मेरे मन में भी यही था, मैं डर दी रब रब कर दी वे मैं कर दी रब रब।
1: डर दी क्यों दी, आप डरते होते
0: डर दी ये है।
2: गौरव तुषार
0: दर्दी दर्दी दर्दी, इतना दर्द था मेरे कल दिल में और मैं रब रब ही कर रहा था क्योंकि मेरी बहन कह रही थी बस इतना ही दे रहा है तू मुझे शगुन में। खैर शगुन तो दे दिया, फिर उसके बाद कह रही चले मुझे ले गिफ्ट मंगा दे कुछ।
1: डायसन डायसन टाइप वाले गिफ्ट मांग लिए थे क्या?
0: डायसन टाइप वाले गिफ्ट मांग लिए होते तो मैं शायद लुट चुका होता, मेरे को गाड़ी बेचनी पड़ी।
1: फिर आप वो गाना गाते लुट पुट गया।
0: हाँ मैं लुट पुट गया। खैर मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि रक्षाबंधन पर कल जेबें ढीली हुई है सभी भाइयों की। और चलो एक बार आता त्योहार ठीक है चलता है, बट मेरा बर्थडे भी तो एक बार आता है, वो क्यों नहीं याद रहता किसी को?
1: क्योंकि वो रक्षाबंधन नहीं है ना।
0: इसके अलावा एक और चीज़ है इंटरनेशनल मेंस डे, वो भी किसी को याद नहीं रहता,
1: वो भी रक्षाबंधन नहीं है।
0: ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हर साल होती है मेंस के लिए बट मेंस खुद नहीं सेलिब्रेट करते।
1: मेंस कहते हैं क्या ही करेंगे, क्यों ही करेंगे, हमारी ही जेब से पैसा जाएगा। मेंस डे बोलेंगे बीवी कहेगी लाओ पैसा लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना।
0: और इसके अलावा काफी बार ऐसा भी होता है कि मेंस ना छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, एक छोटी सी पानी बोतल ले आते हैं उसमें खुश हो जाते हैं, मतलब क्यूट सी जो सैटरडे संडे में मिलती है मार्केट में। खैर इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा देखो राखी पे तेरे कितना खर्चा हुआ?
1: देखो मेरा खर्चा मैं इसलिए खर्चे की तरह नहीं गिनता हूँ क्योंकि मेरी रिकवरी हो जाती है।
0: कैसे?
1: मैं जितने का दीदी को पैसा देता हूँ या कुछ करता हूँ पलट के उतना दे जाती है।
0: अरे वाह,
1: मतलब वो पलट के उतने के गिफ्ट दे जाएगी, कभी टी शर्ट दे देगी, कभी बढ़िया कुछ और ईयरपॉड्स ईयरपॉड्स गिफ्ट करता हूँ, मेरा बैलेंस हो जाता है, मैं जितना इन्वेस्ट करता हूँ उतना रिटर्न आ जाता है।
0: तो एक्चुअली मैं वो तेरी दीदी है ना, एक्चुअली मेरी भी बहुत सारी दीदियाँ हैं, सब कजन्स हैं, एंड अगर मैं काउंटिंग करूँ कजन्स की तो ये मैं फर्स्ट कजन्स की बात कर रहा हूँ, बिजर्व फर्स्ट कजन ही मेरी 10 है। सोच कितना खर्चा होता होगा मेरा,
1: हजार के हिसाब से मिला होगा 10,000।
0: एक्चुअली मेरा भाई भी है ना तो थोड़ा बढ़ जाता है हिस्सा। खैर
1: तो दोनों का मिला के 10,000।
0: हाँ दोनों का मिला के 10,000 हो जाता है। खैर इसी के साथ साथ मैं बस ये बोलना चाहूंगा ये खर्चों को खर्चों में नहीं गिनना चाहिए क्योंकि ये प्यार है भाई बहन का।
1: हाँ, उस महीने का बजट जो हिलता है वो
0: मैं तो कह रहा था मंथ एंड और था इस हाँ, बार तो
1: मैं तो सोच रहा हूँ किसी बिजनेसमैन का सीए कहते हैं सर राखी का खर्चा अकाउंट कराओ जरा अपने अकाउंट में इस बार।
0: और इसका भी मैं कह रहा हूँ जो हमारे प्रॉफिट गिनते हैं ना, जो हम लोग साल में आईटीआर फिल करते हैं फाइल करते हैं, तो प्रॉफिट में तो ये भी काटना चाहिए,
1: लॉस में दिखाना।
0: लॉस में
1: 10,000 रुपए लॉस क्यों, सिस्टर्स को राखी में दिया था।
0: चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो के
1: जीटी को यानी गौरव और
0: तुषार।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: मैं फरीदाबाद में नया नया सा हूँ, अरे फरीदाबाद क्या, हरियाणा में ही मैं नया नया सा हूँ। तो आज मैं अपने को होस्ट यानी कि गौरव से कुछ बातें जानना चाहता हूँ।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीपी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप।
0: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो वीकेंड जिसको हम कहते हैं, जो हमको बहुत खुशी देता है, छुट्टी देता है,
2: वीकेंड में दो दोस्त होते हैं, बता दो, शनि और रवि, मतलब शनि और रवि।
0: वाह, ये जो आपने नई टिप्पणी बताई है, ये बताइए फरीदाबाद में कहाँ कहाँ घूमने जा सकता हूँ, क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्या खा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मतलब
2: फरीदाबाद में जवाब दूँ, कुछ नहीं कर सकता।
0: क्यों?
2: हम लोगों की प्लानिंग हर हफ्ते होती है, सैटरडे की शाम को ये करेंगे,
0: मेरी हो जाती है, मैं अकेला हूँ ना मम्मी के साथ यहाँ पर, तो मेरा चल जाता है।
2: प्लानिंग यार खूब सारी करते हैं हम लोग भी, बट नहीं कर पाते। अब चलो घूमने की बात तूने बोली दी है, तो मौला फरीदाबाद वो करा सकता है।
0: हो आया हूं। और कुछ नेक्स्ट?
2: नीम का जेल चले जा।
0: ये कहाँ है?
2: जेल है।
0: जेल मतलब देखने मिलता है?
2: देखने की मिलेगा तुझे।
0: कुछ वैसा बताओ जो जाके जेल भी होता देखने मिलता। क्या
2: व्हाइट हाउस देखा है तू?
0: व्हाइट हाउस कहाँ है?
2: व्हाइट हाउस मींस वर्ल्ड स्ट्रीट।
0: हाँ वो पहले देखा था, अब तो बहुत चेंज
2: बहुत चेंज हो चुका है, बट हाँ अभी
0: वो उसमें बड़ा सा चक्का क्या बनाया उन्होंने,
2: वो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस शायद बना रहे हैं। और उसके अलावा बोला जा रहा है कि वहाँ पर हनी सिंह की शूटिंग चल रही है।
0: अच्छा, तो वो हनी सिंह से मिलाऊं कुल मिला के आप ये कह रहे हो। अच्छा वो बताओ, वो जो चक्का मैं बोल रहा हूँ, वो जॉइंट व्हील नहीं लगता कोई बहुत बड़ा सा जॉइंट व्हील लगा?
2: मुझे पता है रावली में एक मंदिर है, परसोन मंदिर, वहां से दिखाई देता है जिस दिन साफ मौसम होता है।
0: तो मंदिर भी तो जा सकता हूँ, ये क्यों
2: बिल्कुल मरसोन मंदिर जाने के लिए वैसे कोई थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, जो तेरे पास बाइक ऑलरेडी है, बट मम्मी के साथ नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑफ रोडिंग बाइक पर कहाँ मम्मी को बैठाएंगे।
0: मम्मी को बगल वाले मंदिर भेज दूंगा और मैं वहाँ चले
2: ये भी कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ साथ घूमने प्लानिंग की सब कुछ होगी, मगर अभी लेते हैं हम दोनों इजाजत, मिलेंगे आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 9, मैं तो मिल ही जाऊंगा।
0: मैं नहीं मिलूंगा
2: बिल्कुल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और
0: वो कहते हैं ना, डोंट ट्रबल योर मदर और मदरलैंड।
2: बिल्कुल, ऐसा क्यों बोला?
0: बस मन कर रहा था कि तो लोग ट्रबल करते हैं ना, गंदगी फैलाते रहते हैं, मम्मी की बात नहीं सुनते हैं, गंदे बच्चे
2: मत बनिए, अच्छे अच्छे बच्चे बनिए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर जीटी लेते हैं आपसे इजाजत, बाय बाय।
0: जीटी का मतलब गौरव और तुषारी, और कुछ ना सोचना
2: बिल्कुल, तब तक के लिए गाना

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जिनका वर्ष 2017 में अंग प्रत्यारोपण हुआ और जिन्हें एक अनजान व्यक्ति और परिवार द्वारा बिना किसी संकोच के किए गए अंगदान ने एक नई खुशहाल जिंदगी दी। सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: नमस्कार दोस्तों, ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका फिर से स्वागत है। आज ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ स्टूडियो में है और वे श्रीमती जया जी से बात कर रही हैं, जिनका वर्ष 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे का प्रत्यारोपण हुआ है। एक अंगदाता ने जया जी के जीवन को एक नई रोशनी दी, तो चलिए अंगदान से जुड़ी उनकी कहानी जानते हैं।
1: शुक्रिया पायल। नमस्कार दोस्तों, मैं ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जया जी, जो हमें अंगदान से जुड़े अपने जीवन के एक पड़ाव से रूबरू करवाएंगी। जया जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
2: मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद गीतिका जी।
1: जया जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम जया है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड हैं जो आर्मी में हैं और एक 6 साल का बेटा है।
1: जया, तो आपको क्या बीमारी हुई थी और आपने सबसे पहले ऐसे कौन से लक्षण देखे थे जिससे आपको किसी बीमारी के होने का शक हुआ?
2: मुझे बताया गया था कि मुझे CKD हुआ है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका कारण मुझे एक दूसरी बीमारी बताई गई थी ल्यूपस नेफ्राइटिस करके। शुरुआती लक्षणों में मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे लगातार बुखार आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, मैं बहुत ही ज्यादा वीक फील करती थी, बहुत जल्दी मुझे थकान लग जाती थी, भूख लगना मुझे बंद हो गई थी और मेरा धीरे धीरे वजन भी कम होने लगा था।
1: तो ये जो बीमारी है, ये कौन से वर्ष में हुई थी जया?
2: ये बीमारी मुझे 2015 में हुई थी। जैसे मैंने बताया कि जनवरी 2015 से मुझे लक्षण जो है वो आने लग गए थे, पर धीरे धीरे मैंने जब ये देखना शुरू किया कि मेरी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर से मिली। वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है।
1: तो क्या ये आप पहली बार जब आप डॉक्टर से मिली तभी आपको पता चल गया था, या क्योंकि आमूमन देखा गया है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए भी एक लंबा समय लग जाता है कहीं कहीं पर, तो आपके साथ क्या अनुभव रहा?
2: जी नहीं, मेरा एकदम से तो नहीं पता चला, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको पता करना है कि आपकी किडनी का सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब मैं अपना शुरुआत में अपना टेस्ट करवाने गई थी, तो मुझे मलेरिया की दवाई दे दी गई थी कि आपको मलेरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये दवाई ले लीजिए। बट जब दवाई लगातार लेते हुए भी मुझे अपने अंदर कोई सुधार महसूस नहीं हुआ, तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। फिर मैं देहरादून गई, अपने मम्मी पापा के पास देहरादून गई, वहाँ के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। वहाँ कई टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ, मेरी जो किडनी है वो खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब 70% मेरी किडनी खराब हो चुकी थी उस टाइम पर।
1: और इस सब प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा आपको?
2: करीबन मुझे 1 महीना लग गया था पता करने में
1: कि आखिरकार बीमारी क्या है।
2: हाँ जी, आखिर बीमारी क्या है, 1 महीना मुझे लग गया।
1: और ऐसे में आपके लक्षण जो है वो बिगड़ते जा रहे थे कि कैसे आप अपने परिवार के साथ कोप अप कर रही?
2: देखिए, ऐसे में मेरे जो लक्षण थे वो बराबर जारी थे। मुझे वॉमिटिंग की जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो बहुत ज्यादा, मतलब हद तक कम हो गया था। मैं जो भी खाती थी वो मुझे पचता नहीं था। मैं किचन में जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि खाना बनाते हुए जो तड़के की जो स्मेल होती है इतनी लगती थी कि मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। तो इस दौरान बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना ये फेज निकाला है।
1: यहाँ पर जया, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर आपकी आगे की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में फिर लौटते हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में। मैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ हूँ और मेरे साथ है एक खास मेहमान जया। तो जया जी, हमने जाना कि कैसे सही बीमारी का पता लगाने में आपको एक लंबा समय लगा, जिस कारण इलाज भी सही नहीं हुआ। आपको पहले मलेरिया की दवाई दे दी गई, सही डायग्नोसिस न होने के कारण आप विभिन्न लक्षणों से जूझती रही। तो जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अचानक आपके मन में क्या आया और उसके बाद आपने क्या किया?
2: जब मुझे पहली बार पता चला कि किडनी खराब हो चुकी है, डॉक्टर्स ने बताया कि अब 70% हमारी मेरी किडनी जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कहाँ जाएं, क्योंकि इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था हमारे पास। कुछ पता ही नहीं था, एक छोटे शहर से हम आते हैं तो इन सब चीजों, छोटे शहरों में जो है इन बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जब हमें पता चला कि जो मेरी किडनी है वो खराब हो चुकी है, तब जिस डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ आपकी किडनी खराब हो चुकी है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है अपना इलाज, जो अपना ट्रीटमेंट जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल से करवाएं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। हम अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आरआर में या बेस हॉस्पिटल में हमें अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। उनके सजेशन से जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, फिर वहां से हमने मुझे दिल्ली बेस हॉस्पिटल के लिए रेफर करवाया गया। तो 15 मई 2015 को मैं दिल्ली पहुंची थी। वहाँ मेरा जो रिपोर्ट थी वो डॉक्टर कर्नल श्रीनिवासन सर ने देखी थी, तो मेरी रिपोर्ट देखते ही उन्होंने मुझे डायलिसिस पे डाल दिया था, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिनिन था उस समय 10 पे पहुंच चुका था। और बोला कि 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाने को कहा गया, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन था मेरा उस समय 4 पे आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है किसी के लिए भी। फिर बाद में कर्नल श्रीनिवासन सर ने मुझे वहीं बेस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, ताकि मेरी किडनी किस वजह से फेल हुई है इसका कारण का पता चल सके, क्योंकि 3 मेन कारण माने जाते हैं किडनी फेल होने के। एक तो हो गया आपका हाई बीपी, दूसरा डायबिटीज, और तीसरा कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही हो तो आपका हो सकता है कि किडनी खराब हो जाए। बट मेरे केस में ये तीनों ही जो कारण थे वो मिसिंग थे। तो जब ये तीनों कारण मेरे उसमें नहीं, मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रही थी, तो मेरे काफी टेस्ट करवाए गए। मुझे बीच में आरआर भी रेफर किया गया कि आरआर में जाके आप कुछ टेस्ट करवाइए, ताकि हमें पता चले कि किडनी जो है वो आपकी किस वजह से खराब हुई है। और ये प्रोसेस करने में कम से कम 2-3 महीने लग गए कारण का पता करते करते कि मेरी किडनी क्यों खराब हुई। इस बीच मुझे सीवियर एनीमिया भी हो गया, जिसमें मेरी जो खून की कमी थी वो लगातार, मेरा जो खून हीमोग्लोबिन था वो लगातार मेरा गिरता जा रहा था। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों गिर रहा है, किस क्या कारण है। तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए भी मुझे आरआर में रेफर कर दिया गया, जिसमें मुझे हिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया गया, और रिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे ल्यूपस के लिए रेफर किया गया। तो तीनों डिपार्टमेंट में मुझे दिखाना पड़ा, डॉक्टर्स को बार बार अपनी रिपोर्ट्स को दिखाती थी मैं। डॉक्टर्स ने मैं समझाया, बीमारी के बारे में जानकारी दी और बताया कि हाँ इन बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है।
1: तो ऐसे में आपके परिवार को जब आपकी बीमारी का पता चला, और उनका क्या एकदम से रिएक्शन आया जब उनको पता चला कि आपको ऐसी बीमारी है और किडनी जो है वो खराब हो गई है?
2: पहले तो जब पता चला तो सब शॉक में आ गए कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कैसे बीमार पड़ गई। तो पहला रिएक्शन तो यही था। फिर जब धीरे धीरे जब हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ खराब हो चुकी है, अब हमें इलाज की तरफ ध्यान देना है, ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है, तब मेरे परिवार मेरा साथ खड़ा था, हर मुश्किल में मेरे साथ था। ये सबसे बड़ी बात थी कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मॉरली भी सपोर्ट किया कि हाँ तुम सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी का हम देख लेंगे।
1: जब जैसे कि आपने बताया कि आपकी बीमारी के समय आपके परिवार ने और आपके हस्बैंड ने आपका बहुत साथ दिया, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरी जर्नी में। तो आमतौर पर किडनी डोनेशन की जब बात आती है, हमारे देश में अधिकतर केसेस में परिवार का ही कोई सदस्य किडनी डोनेट करता है, तो आपके केस में क्या ऐसा कुछ हुआ कि कोशिश की गई हो लिविंग डोनेशन के लिए?
2: जी, जब पता चला कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है, तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो ट्रांसप्लांट का है, आप ट्रांसप्लांट करवा दीजिए तो आपकी लाइफ जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। बट इस केस में भी हमें दो ऑप्शन दिए गए कि आप अगर आपकी फैमिली से अगर कोई डोनर आता है, यानी लिविंग डोनर आता है जो सामने से अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो फैमिली से डोनर आपको देता है उसके मैच करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा दोनों रेडी हो गए कि हाँ हम देने को तैयार हैं, आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, हम आपकी बेटी को किडनी देने के लिए तैयार हैं। बट बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हुए, मैच नहीं हुई मेरे केस में, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी किडनी मैच नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा था वो था ब्लड ग्रुप का। तो मेरे पेरेंट्स से मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है।
3: तो चाहते हुए भी आपके पेरेंट्स जो है वो आपको किडनी डोनेट नहीं कर पाए?
2: नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत मेडिकल इश्यूज आई थी। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें एक और थेरेपी होती है जिससे आप आजकल आ चुकी है एक थेरेपी, जिससे आप दूसरे ब्लड ग्रुप में भी किडनी को ले सकते हैं। बट बहुत सारी मेडिकल, मेरी कंडीशन में मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत आई थी जिस वजह से मेरे पेरेंट्स डोनेट नहीं कर पाए।
3: जया, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी गए और अभी आए छोटे से ब्रेक के बाद और बताएंगे कि कैसे जया जी को एक नया जीवन मिला। तो सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
4: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: से अलग। मेरी बात सुनते हो? रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees.

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जया जी से, जिनका 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जया, आपने ब्रेक से पहले बताया कि कैसे आपको अपनी बीमारी का पता चला और कैसे आपके परिवार के सदस्यों ने आपको सहारा दिया, और ये बात साफ हो गई कि बहुत चाहते हुए भी किन्हीं मेडिकल कारणों की वजह से आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अंगदान नहीं कर पाया। ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आया और आपको क्या लगा कि कैसे इलाज होगा?
2: पहले तो सारी होप ही हमारी जो थी वो खत्म हो चुकी थी कि अब क्या होगा। अब सेकंड होप हमारी बच गई थी कैडेवर डोनर की। कैडेवर डोनर ये था कि कोई अगर एक्सीडेंट या डेथ केस अगर हॉस्पिटल में आता है मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ तो वो हमें कॉल करें, तब जाके हमें बुलाया जाएगा और हमारा जो है उसके साथ हमारा टेस्ट किए जाएंगे। ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस के टेस्ट होते हैं उसके बाद हमें किडनी मिल जाएगी, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। क्या पता आपके ब्लड ग्रुप का डोनर आए ना आए, बहुत मुश्किल से जो हम जो कहते हैं ऑर्गन डोनेशन जो है वो हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत कम है, तो कैडेवर लिस्ट जो आप कह सकते हैं बहुत लंबी जाती है। बहुत सारे लोग वेटिंग पे होते हैं कि हमें मिल जाए। तो ये जो हमारे मन में पहला विचार मेरे मन में आया कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब सारी लाइफ मुझे शायद डायलिसिस से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी वैसे बहुत रेयर था तो इस वजह से मुझे किडनी मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था।
1: तो अभी जैसे आपने बोला कि आपको लगा कि शायद सारी उम्र आपको डायलिसिस पर रहना पड़ेगा, तो आपके इलाज में डायलिसिस का एक अनुभव कैसा रहा? मतलब बीमारी का पता चलने के बाद और ट्रांसप्लांट होने तक उसके बीच में डायलिसिस के साथ कैसा नाता रहा?
2: जी, डायलिसिस जो है किडनी में जो मेन इलाज हम कह सकते हैं वो डायलिसिस होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो डायलिसिस होता है। और जो ह्यूमन डायलिसिस होता है जो मशीन के द्वारा किया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिस्टुला, और फिस्टुला के साथ भी मेरी बहुत बड़ी कहानियां जुड़ी है कि मेरे बीच बहुत लो रहता था तो जो मेरे फिस्टुला है वो या तो बहुत धीमा काम करते थे या बिल्कुल ही बंद हो जाते थे। कई बार मेरी दो बार मुझे फिस्टुला बनवाने पड़े, उसमें भी मेरे कई बार उन्हें ओपन करने के लिए मेरी सर्जरी हुई कई, पर ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक डेढ़ साल तक मुझे फिस्टुला पे रखा गया, खींच खींच के, मतलब कह सकते हैं कि खींच खींच के उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा इसे डायलिसिस किया। बट जब ये सब सक्सेस नहीं हुआ तो डॉक्टर कर्नल सतीश मंडल का, उस समय जिन्होंने मेरा केस लिया था श्रीनिवासन सर के बाद जिन्होंने मेरा केस लिया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीएपीडी करवा लीजिए। सीएपीडी हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि वाटर डायलिसिस, वो थोड़ा इजी होता है ह्यूमन डायलिसिस से, उसमें रिस्ट्रिक्शन कम होती है आपके लिए। ह्यूमन जो डायलिसिस होता है उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आपकी कम होती है, पर बहुत हद तक मुझे जो कहते हैं कि सुई चुभने से मुझे बहुत डर लगता है, तो उससे मुझे काफी आजादी मिल गई थी जब मैंने अपना सीएपीटी करवाया था। और इसी दौरान मेरे पापा का भी टेस्ट चल रहे थे हमारे ट्रांसप्लांट प्रोसेस के लिए, पर क्योंकि मेरे मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए थे, मैंने बताया था कि मेरी सीवियर एनीमिया थी तो मुझे हर बार ब्लड की जरूरत होती थी, तो मेरा जो पीआरए परसेंटेज था वो बहुत हाई जा रहा था, तो इस कारण से डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम आपके पापा फादर की किडनी जो है वो आपको नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाई जाएगी तो फिर वो खराब हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम कैडेवर लिस्ट में डाल लीजिए ताकि अगर कोई भी केस आता है तो हम आपको बुला सकें। तो कैडेवर लिस्ट के लिए मुझे फॉर्म वगैरह भरवाए गए मुझसे कि हम आपका नाम कैडेवर लिस्ट में डाल रहे हैं। मैं बहुत लकी थी कि मुझे विद इन अ मंथ, मतलब जून में मुझे मना कर दिया गया था कि

0: फादर की किडनी नहीं लगाई जा सकती है. एंड जुलाई एंड तक मुझे कॉल आ गया था कि आप आ जाइए, आपके जो ग्रुप का एक केस आया हुआ है, एक्सीडेंट केस है, वो आप जो वो है अपने पेशेंट के ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए, अपना ट्रांसप्लांट प्रोसेस का टेस्ट कर लीजिए. तो बाय द गॉड ग्रेस मुझे मेरे जो सारे टेस्ट थे वो उनके साथ मैच हो गए, क्लियर हो गए. और 3 अगस्त 2017 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया.
1: तो आपके ट्रांसप्लांट को 3 साल हो गए हैं और हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद एक नया ही दौर शुरू होता है. तो क्या आप बताना चाहेंगे कि एक अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट ने कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल दी?
0: ट्रांसप्लांट के बाद एक नई लाइफ आपका वेट कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है. जिस समय मैं डॉक्टर्स की निगरानी में और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में थी, ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीना मुझे इनकी निगरानी में रखा गया, उस समय को मैं कहती हूँ कि मेरा लर्निंग पीरियड था. अपने न्यू लाइफ को मैं कैसे जीऊंगी, कैसे अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करूंगी, इसलिए मेरा पूरा लर्निंग पीरियड वो मैं मानती हूँ अपने लिए. क्योंकि पूरे नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रखेंगी आगे जाके, आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे और चीज को आप कैसे सैनिटाइज करके इस्तेमाल करेंगी, अपने जो छोटी छोटी बातें, जो आप खाना है वो घर का पका हुआ होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए, पानी जो है वो आप उबाल के पीजिए और दवाइयाँ आप टाइम टाइम पे लीजिए, जो क्या कहते हैं अपने हाथों को बार बार धोइए, अच्छे से साबुन से धोइए, ये सब चीजें हमें उस दौरान में समझाई गई और बोला गया कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयाँ वगैरह ना खाएं, और अगर हो सके तो थोड़ी से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे. क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आप जब आप भी ट्रांसप्लांट जब होते हैं तो आपको खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, और जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है तो आपको लगता है कि आप क्या क्या खा जाए, तो उसमें वेट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है. तो उसमें कहते हैं कि आप अपनी वेट को कंट्रोल करके रखें, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो आप वॉकिंग वगैरह योगा वगैरह कर सकते हैं वो कीजिए, और जो भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें जाना है, मास्क लगा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो मास्क लगा के जाइए. ये सब चीजें उस दौरान में बताई गई, समझाई गई, और ये भी एक मतलब एक खुशी का एहसास होता है ना कि हाँ अब मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ खेल पाऊंगी, उसे पढ़ा पाऊंगी, जो पहले मजे करना बहुत मुश्किल था. क्योंकि एक तो बीमारी होती है, ऊपर से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उस बीमारी से, उतना दूसरों पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक खुशी का पल था कि हाँ अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ.
1: तो जाने से पहले जया, आप हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दें ताकि वो लोग भी ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें.
0: जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंगदान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई अंग मिले ताकि वो अपनी लाइफ एक नए तरीके से जी सके. और अगर यदि कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ घटित होता है तो मैं अपना वॉलेंटरी अपना अंगदान करने के लिए ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम लिखवाना चाहूंगी. और बस अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अच्छी सोच, नेक इरादा, अंगदान से समाज का भारी फायदा.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जया, आपने बहुत सही बात कही. अच्छी सोच, नेक इरादा, और हम सभी को आगे बढ़कर इस इरादे को और मजबूत करने की आवश्यकता है. हमें चाहिए कि हम अंगदान के बारे में और बात करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बताएं और इसे बढ़ावा दें. तो आपने यहाँ आकर अपनी कहानी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जया. हम दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में.

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: है तो टेढ़ी मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें।
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, है ना?

0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
1: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
1: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
0: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
0: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
1: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको एक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास सीख एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
0: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
1: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
0: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने तीन बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, ढोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदु पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, अपने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो, और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। आज तक आपने विजय शेखर शर्मा को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखा होगा, बट एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाज वंस जस्ट अ किड विद कंफ्यूजन, फियर एंड ड्रीम्स। सो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ, अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, आइडियलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे। मदर वॉज अ होम मेकर, सिंपल फैमिली वैल्यूज, सिंपल लाइफ स्टाइल। लेकिन ड्रीम्स छोटे नहीं थे। अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 14 साल की उम्र और कोई बच्चा 12th पास कर ले। साउंड्स अनबिलीवेबल ना? लेकिन विजय शेखर शर्मा ने यही किया। ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, स्कूल टॉपर, शार्प माइंड, और शायद इसी वजह से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और यही से उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आया, बिकॉज टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद को अकेला फील करना शुरू कर दिया। रीजन, इंग्लिश। उन्होंने पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और सडनली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट तक पहुंच गए थे जहां हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। क्लासेस इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में, और एक लड़का जो इंटेलिजेंट था लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से खुद को पीछे महसूस करने लगा था। उन्होंने खुद कहा था कि एक ऐसा टाइम आया जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था। इमेजिन द प्रेशर, जब आप कैपेबल हो लेकिन खुद को एक्सप्रेस न कर पाओ। बट दिस इज द पार्ट आई पर्सनली लव अबाउट हिज स्टोरी। उन्होंने हार नहीं मानी। He started learning English on his own. पुरानी मैगजीन्स पढ़ी, बुक्स पढ़ी, फ्रेंड्स की हेल्प ली और एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर। और शायद यही डिफरेंस होता है ड्रीमर और अचीवर में। ड्रीमर सिर्फ सोचते हैं, अचीवर्स अनकंफर्टेबल होकर भी सीखते हैं। लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनका फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं रहा, उन्होंने कोडिंग सीखनी शुरू की, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। While others were looking for jobs, he was trying to build something for his own. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस ने यूज करना भी शुरू कर दिया। एंड यस, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन सिर्फ 6 महीने, बिकॉज समवेयर द एंटरप्रेन्योर इनसाइड हिम वाज टू रेस्टलेस फॉर अ रेगुलर लाइफ। उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोस्तों के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी। अब बस यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डेंजरस होने लगती है, बिकॉज ड्रीम शुरू हो चुका था लेकिन सक्सेस अभी बहुत दूर थी। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में जब बिजनेस चल नहीं रहा था, सैलरी सिर्फ 10,000 थी, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा था, और कैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट रियल टीम बनाई। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड में, आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने जाना कैसे विजय शेखर शर्मा एक स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर निकले, लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम शुरू करना आसान होता है, उसे सर्वाइव कराना सबसे मुश्किल। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट इन रियल लाइफ इट कैन ब्रेक यू मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। विजय शेखर शर्मा के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की, आइडियाज थे, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी और मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रेशर पता क्या होता है, स्टेबल हो जाओ यार। उनके फादर भी यही कहा करते थे, कंपनी बंद करो, नौकरी कर लो, अगर 30,000 भी मिल रहे हैं तो बहुत है। और एक सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो बस हमें स्ट्रगल में टूटते हुए नहीं देख सकते। और मैंने कहीं जाकिर की वो एक लाइन सुनी थी कि माँ बाप हमारे पैशन से नहीं जलते, वो बस इस बात से दुखी होते हैं कि कहीं हम गरीब ना रहें। लेकिन उस टाइम विजय शेखर शर्मा एक ऐसे फेज में थे जहां ड्रीम्स और रियलिटी दोनों लड़ रहे थे, एक तरफ थे एम्बिशन और दूसरी तरफ बिल्स। उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। कैन यू इमेजिन बिल्डिंग बिग ड्रीम्स विद ऑलमोस्ट नो मनी, इतने कम इनकम के रिश्ते तक आने बंद हो गए। इन्होंने खुद को इन एलिजिबल बैचलर तक कह दिया। दैट लाइन साउंड्स फनी मे बी बट समवेयर इट्स पेनफुल टू, क्योंकि सोसाइटी सक्सेस को नहीं रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है। जब तक स्ट्रगल चल रहा होता है लोग आपको कंफ्यूज्ड समझते हैं, लेकिन इसी फेज में इन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ क्विट इन्होंने सीखा कंटिन्यू रखना। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल इकोसिस्टम, वो फ्यूचर को समझ रहे थे जब बाकी लोग प्रेजेंट में स्टक थे। और यहीं से धीरे धीरे उनकी टीम बननी शुरू हुई, नॉट अ बिग कॉर्पोरेट टीम, बस कुछ लोग जो आइडियाज पर बिलीव करते थे। कई बार ऑफिस छोटा था, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। और बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज फंडिंग नहीं होती, बिलीफ होता है। जब कुछ लोग आपके ड्रीम पर ट्रस्ट करते हैं ना, वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रोडक्ट्स चले नहीं, फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की पावर को बहुत पहले पहचान लिया था। एंड देन एक आइडिया आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, अ सिंपल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आज दुनिया पेटीएम के नाम से जानती है। लेकिन पेटीएम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स थी, टीम प्रेशर था, फाइनेंशियल रिस्क था, और वो फियर भी था कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अनसर्टेनिटी में भी खुद पर बेट लगाते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद उस मैसिव सक्सेस की, कंपनी का टर्नओवर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडिया बिगेस्ट आईपीओ, और आज प्रेजेंट टाइम में पेटीएम कहाँ खड़ा है अब सबको मालूम है। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

बैक अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड एंड मैं आपके साथ गीत हूँ। और आज की जर्नी अब तक पहुंच चुकी है उस पॉइंट पर जहां स्ट्रगल कहानी नहीं रहती बल्कि हिस्ट्री बन जाती है। विजय शेखर शर्मा एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के फेस की तरह जानती है। लेकिन सोचिए, जिस इंसान को कभी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 थी, जिसे लोग स्टेबल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी करोड़ों इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पेटीएम ने शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। धीरे धीरे लोगों ने बिल्स पे करने शुरू कर दिए, मूवी टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यूपीआई पेमेंट्स। और देखते ही देखते पेटीएम सिर्फ ऐप नहीं रहा बल्कि हैबिट बन गया। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी ना कभी पेटीएम यूज ना किया हो। एंड देन केम द मोमेंट जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पेटीएम लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज, 18,300 करोड़ रुपीज। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। एक सिंपल से लड़के का सपना पूरे स्टॉक मार्केट की हेडलाइन बन चुका था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्ट बैंक, बर्कशायर हैथवे एंड एंट ग्रुप सबने इस विजन पर ट्रस्ट किया। 2017 में विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में शामिल हो गए। लेकिन सक्सेस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उनकी मदर ने न्यूज़पेपर पढ़कर पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या बेटा? एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में शायद पूरी जर्नी छुपी हुई है। अ मदर हु वंस सॉ हर सन स्ट्रगलिंग साइलेंटली, अब उसी बेटे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन स्टोरी यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये स्टोरी है बिलीव की। बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने हमें एक चीज सिखाई है, लैंग्वेज बैरियर परमानेंट नहीं होता, स्मॉल टाउन वीकनेस नहीं होता, मिडिल क्लास बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होता। अगर कुछ पावरफुल होता है तो वो होता है विजन। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले मिसअंडरस्टूड होता है। आज जब लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, दे सी कन्वीनियंस, लेकिन इसके पीछे किसी की स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, लोनलीनेस और इयर्स ऑफ हसल छुपे होते हैं। और यही वजह है कि आज की स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ रिमाइंडर कि ड्रीम्स का कोई एक्सेंट नहीं होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेस कम है, इंग्लिश वीक है, सपोर्ट नहीं है, देन

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 69.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

कहते हैं रनिंग करने की कोई एज नहीं होती, लेकिन आज के हमारे गेस्ट ने इस बात को सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया है। 51 साल की एज, रनिंग जर्नी को शुरू हुए सिर्फ 3 साल, और आज वो मैराथन रनर ही नहीं बल्कि अल्ट्रा मैराथन रनर भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दिन में किलोमीटर्स नहीं कोड और बिजनेस प्रॉब्लम्स भी रन करते हैं, क्योंकि ये फरीदाबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर भी हैं। तो सवाल ये है कि एंटरप्रेन्योर के लिए 50-60 किलोमीटर दौड़ना ज़्यादा मुश्किल है?

0: वेलकम टू आवर स्टूडियो।
1: थैंक यू वेरी मच गौरव।
0: और सभी को बता देना चाहता हूँ, फरीदाबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते हैं सर, मगर उसके साथ साथ रनिंग भी करते हैं, और आज से सिर्फ और सिर्फ 3 साल पहले इन्होंने रनिंग शुरू की थी। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने 48 की एज में रनिंग स्टार्ट की, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि अब रनिंग करनी है?
1: इससे एक्चुअली जब मैंने 48 की एज में, मैंने कभी एज तो सोचा नहीं था कि मेरी एज है क्या एक्चुअली, तो जो ट्रिगर पॉइंट था, मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हूँ और मेरी जो एप्पल वॉच है मुझे वो बैठे बैठे वार्निंग शो करती है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो 105 हो गई है
0: जी।
1: तो मुझे लगा ये 105 हो गई तो क्या हो गया। मैंने गूगल किया, जाके चेक किया, तो उसमें देन आई रियलाइज कि 105 मीन्स मैं रेस्ट हार्ट रेट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे हार्ट को इतना काम करना पड़ रहा है, तो इट मींस हार्ट को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है
0: जी।
1: और देन मैंने थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ा, तो इवन ऐसा भी लिखा था कि आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो मुझे एकदम से थोड़ा डर लगा
0: जी।
1: बट वो डर लगा, मैं थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया, शायद भूल गया उसको
0: जी।
1: तो थोड़े दिनों बाद देन हम लोग फैमिली के साथ लद्दाख ट्रिप पे गए, तो लद्दाख में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाता है, तो हार्ट रेट मेरा थोड़ा ज्यादा था, तो मेरे को सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा था। तो आई थॉट कि यार 105 मेरा हार्ट रेट रेस्टिंग में आ रहा है और यहाँ पे मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दिवाकर कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, अगर तू अभी ध्यान नहीं करेगा तो कुछ तो मतलब अनहोनी लाइफ में हो सकती है। तो मैं हम लोग ट्रिप से वापस आते हैं एंड देन मैंने थोड़ा पढ़ा, तो मुझे किसी ने बोला कि काम करो तुम ना जिम ज्वाइन कर लो
0: जी।
1: तो आई थॉट कि चल भाई जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो जैसे होता ना कि मतलब एंड किसी से सुन के मैंने जिम गया और वो थोड़ा सा कॉस्ट वॉस्ट को देख के मैंने ईयरली जिम भी ज्वाइन कर लिया। बट जिम ज्वाइन करती अगेन जैसा होता है स्टैंडर्ड कि 2 दिन गया और उसके बाद देन अगेन 1 मंथ छुट्टी। तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, देन मैंने फिर अपने कुछ टेस्ट वगैरह कराए, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बेसिक जो टेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के, तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गया है एंड सारे पैरामीटर हिले हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल, व्हाटएवर जो भी डॉक्टर्स ने मुझे बताए। तो मुझे लगा दिवाकर अगर तू सीरियस नहीं होगा तो मतलब तेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 महीने के बाद देन फिर मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हुआ एंड एक दिन मैं रेस्ट करता था तो मैंने जिम जाना शुरू किया, और मैंने रनिंग बोलूंगा तो मैं वहां पे 10-15 मिनट से चालू की, तो ट्रेडमिल पे मैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, देन साथ में मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू की। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जो मैं कंटिन्यू कर सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कुछ स्पेशल करूं एंड देन उसके बाद बंद कर दूं एंड देन मेरी बॉडी वापस वहां पे हो जाए। तो जब मैंने ये 48 की एज में चालू किया था तो मेरा वेट अराउंड 103 टू 105 केजी हो गया था, मेरा जो वेस्ट साइज था अराउंड 40 टू 44 मेरा वेस्ट साइज था, मैं ट्रिपल एक्सल 4XL के भी कपड़े ढूंढता था कई बार, तो हर जगह मेरे कपड़े नहीं मिलते थे, तो मैं इवन कपड़े भी टेलर से ही बनवाने जाता था क्योंकि आपको रेडीमेड कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर मुझे लगा कि यार सिर्फ रनिंग से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तो कुछ नहीं होगा, तो देन मैंने डाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मैंने मेजरली अपनी डाइट में चेंज किया, थोड़ी सी रनिंग शुरू की, तो जैसे 2-3 किलोमीटर 15-20 मिनट से चालू किया मैंने ट्रेडमिल के ऊपर, देन 1/2 आवर किया, देन 1 आवर किया, तो 1 आवर में आफ्टर 3-4 मंथ्स आई वॉज एबल टू डू 10 किलोमीटर।
0: तो सर यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया 10 किलोमीटर से 1 घंटे में आप कर लेते थे, तो पहले 5 किलोमीटर हुआ, फिर उसके बाद आपने स्टॉप लिया होगा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर जब हुआ, मतलब एक इंसान जब रनिंग करना शुरू करता है उसके लिए 3 किलोमीटर भी बहुत होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब रनिंग कंटिन्यू करता है तो 5 किलोमीटर भी वो इजीली कर लेता है, फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर के मुकाम पर पहुँचता है। तो इन 3 मोमेंट्स में से सबसे इमोशनल कौन सा था आपके लिए?
1: 3-5 किलोमीटर तो मुझे लगा कि ठीक है यार हो गया, जब 10 किलोमीटर मैंने किया, एक डबल डिजिट सा नंबर होता है ना, और एक 1 आवर मैं कंटिन्यूअस रनिंग कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी का जो एंड्योरेंस है, मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है, मतलब जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मतलब अब मुझे जो सांस नहीं चढ़ रही है जो मुझे इवन लद्दाख में 3-4-5 महीने पहले हो रही थी, तो जब मैंने वो किया तो इवन यू वॉन्ट बिलीव, मैं आपको एक रियल मेरा बता देता हूँ कि उस टाइम मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, और मैंने इवन ना ट्रेडमिल की फोटो भी खींची थी कि मैंने किस नंबर में पूरा किया, जैसे वहां पे 61 मिनट 62 मिनट्स आया, तो मैंने जो जिम के ओनर है उससे पूछा, मैंने कहा अभी 10 किलोमीटर ये 1 आवर में ठीक है क्या? कहता नहीं यार बहुत अच्छा है, आपने 3-4-5 महीने में आपने जो ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में कर लिया है, विच इज आई वुड से वेरी गुड,
0: वेरी गुड।
1: सो अब ये हो गया, अब मुझे लगा यार व्हाट नेक्स्ट
0: जी,
1: अब 10 किलोमीटर के बाद क्या? अच्छा मैं वहां बोर होने लग गया, ट्रेडमिल के ऊपर मैं एक ही मशीन पे खड़ा हुआ, एक ही स्क्रीन को देखता जा रहा हूं कि क्या स्पीड चल रही है, मेरे कितने कैलोरीज बर्न हो गए हैं, एप्पल वॉच हाथ में पहन ली है, 10 किलोमीटर हो गया, देन व्हाट नेक्स्ट? तो देन मुझे, मैंने पढ़ा इसके बारे में क्या होता है, तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा कुछ रनिंग वाली कैटेगरी में जो इवेंट्स होते हैं, कुछ मैराथन नाम होता है उनका,
0: बिल्कुल.
1: तो उससे पहले मैं जब जॉब किया करता था, आई यूज टू वर्क विद कंपनी IBM ऑल्सो, तो IBM में एयरटेल वॉज माई क्लाइंट. तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, जब हम IBM में जॉब करते तो एयरटेल हाफ मैराथन हुआ करती थी. तो देन आई वॉज एबल टू रिलेट कि यार कुछ तो मैराथन होता है जिसको कि वो रनिंग का कोई इवेंट होता है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया.
0: जी, तो सर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको बता देना चाहता हूँ, दिवाकर महेंद्र जी हमारे साथ, जिन्होंने 48 की एज में रनिंग करना शुरू किया, और कैसे इन्होंने रनिंग जर्नी स्टार्ट की है तो इन्होंने बता दिया, बट वो मैराथन तक पहुँचना, वो हाफ मैराथन तक पहुँचना कैसा था, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद. आप सुन रहे हैं खास मुलाकात, मैं हूँ अर्जुन गौरव आप सभी के साथ.

0: अक्सर हम लोग एक रिपोर्ट का वेट करते हैं कि हम लोग रिपोर्ट लेंगे, ब्लड रिपोर्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी बॉडी के लिए कुछ शुरू करेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल आ गया फिर हम बोलेंगे हम तो फिट हैं, हमने तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। खास मुलाकात में स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिवाकर महेंद्रू जी एंड फरीदाबाद। आप सबको बता दूं कि 48 की एज में रनिंग करना कोई आम बात नहीं है। सर, एक सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो यही है कि आपने 48 की एज में रनिंग स्टार्ट करी और 51 तक आप अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको आज अपने 48 ईयर ओल्ड सेल्फ से एक सेंटेंस कहना हो, जिस दिन उसने पहली बार रनिंग शूज पहने थे, तो आप क्या कहोगे?
1: मैं तो कहूंगा बहुत लेट हो गया था भाई। 48 तो एज बड़ी लेट हो गई। वो चलो अच्छी बात है कि मैं 48 की एज में भी सस्टेन कर पाया, नहीं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने हार्ट के अंदर स्टंट लगवा चुके हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। और जब इतनी प्रॉब्लम हो चुकी होती है उसके बाद आप चाह के भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो मेरा पर्सपेक्टिव तो ये रहता है कि आई वाज लेट डेफिनेटली, बट आई वुड से थैंक्स गॉड कि मैं 48 के एज में मैं इतना नहीं गिरा, मतलब मैं बॉडी से इतना बेटर था कि समाव मैंने धीरे धीरे शुरू किया और आई एम एबल टू मैनेज। और अब मैं बिल्कुल, मेरे सारे पैरामीटर परफेक्ट हैं और मेरे कहीं पे कोई मुझे पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मेरा एंड्योरेंस इतना अच्छा है, मैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे कंटिन्यूअस भाग सकता हूं और मैं भागा हूं 14 घंटे। So what I'm saying कि यही मैं बोलना चाहूंगा कि I should have started earlier, maybe 20s में, 30s में, maybe कम होता, but at least वहाँ पे मेरी अवेयरनेस होनी चाहिए थी। तो मेरे को हेल्थ का तभी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई खुद मान जाओ, नहीं तो डॉक्टर मनाएगा।
0: जी बिल्कुल सर, आपने जो रनिंग स्टार्ट करी तो एक इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर चैलेंजेस आते हैं काफ़ी सारे, मन नहीं करता। सबसे पहली चीज़ मन ही नहीं करता लोगों का। जो भी लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये बता दीजिए आपने कितना वेट लॉस किया इस पूरी जर्नी में, और इसके बाद ये बता दीजिए कि आपने जो स्टार्ट किया था तो मन में वो क्या आया था कि मुझे आज रनिंग करनी है, मतलब आपने 1 किलोमीटर करना है या 2 किलोमीटर करना है या 5?
1: मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि मेरा जो वेट था उस टाइम 103 और 105 के अराउंड था।
0: okay.
1: और मैं, एक डॉक्टर शिव सरीन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली में, किसी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो मैंने सुना था उनके मुंह से कि आपका वेट कितना होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। डॉक्टर तो कुछ भी बोल देगा ना, ये वेट होना चाहिए, बट आपके हिसाब से आपका टारगेट क्या है। तो सिंपल रूल बोलते हैं, योर हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 should be your weight.
0: Okay.
1: तो मेरी height 5'7 है, it means 170 centimeter. तो मेरा ideal weight is 70 kg. तो मुझे लगा कि यार 103-105 से 70, मतलब 33-35 kg weight lose करना है। So मैंने सोचा ही नहीं, कि मुझे लगा कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, इतना weight तो lose नहीं कर पाऊंगा। But मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, start तो करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: 35 नहीं होगा, 3.5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, और मैंने उसके बारे में छोड़ दिया सोचना, बट मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। यू राइटली सेड गौरव, कि जब आप भागते हो ना, जिसे आप ये बोलते हो कि मन नहीं कर रहा है, ये मन क्या होता है? मन का मतलब है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो मन भी करेगा।
0: बिल्कुल।
1: आप क्यों नहीं खुशी खुशी भागोगे? आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप सांस नहीं चढ़ रहा है आपको। अगर आप रोड पे भाग पा रहे हो तो आपको लगेगा ना यार 5 क्यों, मैं 10 भागता हूं, 1 घंटा भागता हूं, 2 घंटे भागता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके मसल्स को, आपकी बोन को, आपके एंड्योरेंस को, आपके जो सांस चढ़ना हम जिसको बोलते हैं, एक हम वर्ड यूज करते हैं VO2 max, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वी मतलब वॉल्यूम ऑक्सीजन, कि आप जब कंफर्टेबली भाग रहे हैं तो आपकी बॉडी कितना कंफर्टेबली ऑक्सीजन ले पा रही है, तो इसमें सांस नहीं चढ़ेगा आपको। आपने देखा हो ना, आप तेज चलते हो
0: जी,
1: तो इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी को सांस, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए बट आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही। सो मैंने इन सारी चीजों के बारे में जब पढ़ना शुरू किया कि मुझे, मेरे को अपने मसल्स को स्ट्रांग करना है, फैट को कम करना है, अपनी बोन्स को स्ट्रांग करना है, क्योंकि बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में, भागेगा तो भाई तेरे नीज बैठ जाएंगे,
0: नीज बैठ जाएंगे,
1: तो ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। भाई भगवान ने हमारे नीज बैठने के लिए नहीं बनाए हैं, चलने के लिए बनाए हैं। मैं एक बड़ा बेसिक सा आपको एग्जांपल दूंगा जो हमारी, शायद हमारी संस्कृति में बड़ा कॉमन भी है। आपने ये, बड़ा थोड़ा सा रॉ होगा, सॉरी अगर ये आपके दर्शकों को गलत लगे, तो जब हम मरते हैं ना तो 4 दिन बाद हमारी हड्डियां चुगने जाते हैं
0: जी।
1: आपने देखा होगा कि इतना जलाने के बाद भी हमारी हड्डियां गलती नहीं है
0: जी,
1: हड्डियां इतनी मजबूत बना भगवान ने बना के भेजी है कि आप ये सोचो कि उसको हमने इतने हीट में जलाया बट तब भी नहीं जली। बट आप सोचो हम उसका इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि 60-70 की एज में हमें नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ जाते हैं, हमारे दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट मेरा बताने का ये था कि अगर आप अपनी बोन्स, अपने स्ट्रेंथ, अपने मसल्स, अपने हार्ट, अपने खाने पीने का, अपने कोलेस्ट्रॉल का अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है आप एंजॉय करेंगे। फिर आप ये वर्ड बोलेंगे नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आप इवन रात को अलार्म लगा के सोएंगे कि यार मुझे तो 3:30-4 बजे उठना है, मुझे तो स्टेडियम में 5 बजे पहुंच जाना है, मुझे तो रनिंग करना है, मुझे तो शाम को 10 बजे सो जाना है, मुझे वो फालतू में OTT चैनल वगैरह टीवी पे अपना टाइम खराब नहीं करना है, मुझे तो 7-8 घंटे सोना है, बॉडी को रेस्ट देना है, मसल्स को रिकवर करना है, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है और धीरे धीरे फैट कम हो जाएंगे। तो जैसा आपने क्वेश्चन बोला तो मेरा पर्सनली मानना है और इवन अब तो मन करता है, इवन लोग क्या करते हैं सैटरडे संडे इसलिए आता है कि आज हम ज्यादा सोने वाले हैं और हम ऐसे रनर हम लोग क्या करते हैं आज सैटरडे से आज हम ज्यादा रन करने वाले हैं। जैसे आज ही मैं रन करके आया हूं, आज मैं 21 किलोमीटर रन करने गया था। तो अभी मेरा 2 हफ्ते बाद मेरा लद्दाख में 42 किलोमीटर रनिंग का इवेंट है। और जो आप सोचो लद्दाख में जहां मैं सांस की प्रॉब्लम के कारण, जिसने मुझे कहा था कि नहीं बेटा तू रनिंग मतलब तू समझ जा, अब वहां पे 80% SPO2 जहां ऑक्सीजन लेवल 80% है, मैं वो 42 किलोमीटर भागने जा रहा हूं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, अब मेरा VO2 मैक्स बहुत अच्छा है, मैं कंफर्टेबली बड़े आराम से 42 किलोमीटर करके आऊंगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर। इसमें एक छोटा सा सवाल है कि मैराथन में बॉडी चैलेंजेस ज्यादा आते हैं फिर माइंड चैलेंजेस ज्यादा आते हैं?
1: अब जब व्हेन यू से मैराथन, तो मैराथन का ना थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मैं आपको चेंज कर देता हूँ। मैराथन वर्ड जब आप बोलते हो मैराथन इट मींस 42 किलोमीटर।
0: ओके,
1: तो एज पर माई नॉलेज कोई फुल मैराथन नाम का वर्ड होता नहीं है।
0: ओके,
1: वर्ड होता है मैराथन बट हम सामने वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए कई बार बोल देते हैं फुल मैराथन। तो एक्चुअली मैराथन इज ए फुल मैराथन ओनली।
0: ओके,
1: ज्यादातर जनता जो करती है वो 10 किलोमीटर या हाफ मैराथन करती है।
0: 21
1: हाफ मैराथन इज 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक मेरा पर्सनली मानना है कोई चैलेंज आएगा ही नहीं आपको।
0: ओके,
1: ना आपको मेंटल चैलेंज आएगा, बट यस आफ्टर सर्टेन पीरियड 3 मंथ 6 मंथ और मे बी 1 ईयर के बाद आपकी बॉडी थोड़ा यूज हो जाएगी। और 21 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 1 hour 45 minutes से 2 hour 30 minutes तक के बीच में रेंज रहता है। जो थोड़ा यंग रहेगा वो 1 hour 45 minutes 50 minutes 2 hour में कर लेगा। मैं मेरी एज थोड़ा 51 हो गई है तो मैं 2 hour 5 minutes 10 में करूँ। मेरा जैसे भी मैंने VDHM दिल्ली में लास्ट ईयर किया था तो 1 hour 55 minutes में किया था। सो इतना टेंटेटिव रहता है। तो अगर आपको 2 घंटे भागना है 2.25 घंटे भागना है तो इतना चैलेंज नहीं आता है। बट यस यू राइटली सेड हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है जब आप अल्ट्रा रन करने जाते हैं, जब आप मैराथन करने जाते हैं जहां पे आपको 42 किलोमीटर करना है। और 42 किलोमीटर मींस 4 hour and above।
0: Okay.
1: 4 hour मतलब मैं एवरेज बंदे की बात करूं, ऐसा भी है पूरे वर्ल्ड में जिसने 2 घंटे में भी पूरी की थी, बट हम लोग जनरल बात करें तो 4 hour and above आपको कंटिन्यूस भागना है। 42 किलोमीटर में 4 hour, 4 and half hour, 5 hour, 6 hour वहां पे 6 and half hour मिलता है आपको।
0: ओके, मैक्सिमम 6 hours मिलता है,
1: 6 and half hour आपको मिलता है। अगर वहां पे थोड़ा एलिवेशन वगैरह तो 7 hour भी दे देते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन रेस टू रेस। बट आप सोचो मैं 6, 5, 4, 5, 6, 7 hours की बात कर रहा हूं तो आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना है। आपको 4 घंटे में लगेगा मैं क्यों भाग रहा हूं मैं रोड पे क्यों भागी जा रहा हूं। तो वो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। यू राइटली सेड इवन जब आप अल्ट्रा मैराथन, तो एनीथिंग अबव 42 किलोमीटर इज अल्ट्रा मैराथन।
0: ओके,
1: तो 50 किलोमीटर हो गया, 70 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, सो जो भी कुछ 42 किलोमीटर से ऊपर है वो अल्ट्रा है। एंड देन अगेन 42 में अगर 5-6 घंटे लग रहे हैं तो आप सोचो 10 hour 12 hour 28 hour। अभी मेरा दिसंबर में 100 किलोमीटर का रनिंग है जहां पे मुझे 16 आवर मिलेंगे।
0: तो यहां पर सर ने 100 किलोमीटर तक की बात कर दी है, 100, 75, 42, 21, 10, 5, 1। तो अगर आपकी लाइफ में 1 वाला स्टेज भी नहीं आया ना तो आज ही शुरू कर दीजिए। और सर से और भी बातें होती रहेंगी मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात, मैं हूं गौरव आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिवाकर महेंद्र जी।

0: एक मैं नंबर बोलूंगा 51 की एज जब लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है उन्होंने 51 की एज में अल्ट्रा मैराथन की प्लानिंग शुरू कर दी है। सिर्फ 3 साल पहले रनिंग शुरू की है और आज मैराथन से लेकर अल्ट्रा मैराथन तक का सफर तय कर चुके हैं। तो आखिर क्या था वो माइंडसेट जो इन्हें इतनी दूर दौड़ने ले गया, चलिए उनसे जानते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिवाकर महेंद्र जी, फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं एंड एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते हैं। सर पहले तो बता दीजिए वो माइंडसेट क्या था जो आपको इतनी दूर दौड़ने ले गया है।
1: वो होता है ना जैसे कि आपने 21 किलोमीटर करा तो डेली यही सुन रहे हैं 21 किया है बस, अच्छा 21 किया है बस, व्हाट नेक्स्ट। मेरे दिमाग में बड़ा कॉमन रहता है यार व्हाट नेक्स्ट। तो आई थॉट कि यार इसके बाद क्या होता है। तो मैं जब इवेंट्स के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा मैराथन भी होता है, 21 के बाद नेक्स्ट इज 42 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा डर भी गया कि यार 21 पहला 21 होता है
0: जी,
1: बट 21 किलोमीटर बाद जब थक जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट 21 हो सकता है। मतलब मुझे लोगों ने बोला कि जो नेक्स्ट 21 है वो डबल हाफ मैराथन के इक्विवेलेंट हो जाता है, जो मतलब वैन ऐसे कि मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मुझे मेरी हमेशा आदत है मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूं, तो मुझे लगा कि बजाय मैं इवेंट में फेल हूं
0: जी।
1: तो पहले मैंने मुझे एक काम करता हूं, पहले अपने आप से 30-35 किलोमीटर रन करके देखता हूं। तो फिर मैं टाउन पार्क में गया एंड देन आई थॉट के क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 4-5 घंटे रनिंग करना होता है, तो आई थॉट के मैं पहले 4 घंटे रन करके देखता हूँ, लेट्स सी कि मेरी बॉडी 4 घंटे कंटिन्यूस रन कर पा रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें एंड मुझे उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट और 2 घंटा रन कर रहे हैं तो समाओ आप मैनेज कर लेंगे, बट जब आप 3-4 घंटे के रन करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है हर घंटे। आप जब नॉर्मल बैठे होते हैं तो आप इतनी एनर्जी बर्न नहीं करते हैं, बट जब आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे कंटिन्यूस भाग रहे हैं, बीच में पानी पी लिया आपने ज्यादा, तो आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए
0: जी,
1: आप क्वेश्चन ही आता कितना चाहिए?
0: चाहिए
1: मैं क्या खाऊं? तो एक सिंपल सा रूल है जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि जो आपका बॉडी वेट है, क्योंकि हर एक की बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी का बॉडी वेट 50 kg है, किसी का 70 kg है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो मेरा वेट मैं अब रिड्यूस करता करता उसको 77-75 पे लेके आ गया हूं, तो मेरे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो हर घंटे की 75-77 grams कार्ब्स मुझे हर घंटे चाहिए अगर मुझे उस घंटे में रन करना है। तो प्लस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जब आप रन करते हैं तो आपका स्वेट लॉस होता है
0: जी।
1: स्वेट का मतलब आपकी बॉडी से मिनरल्स निकल रहे हैं, सॉल्ट निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है आपकी बॉडी से। तो आप ये सोचो कि वो जो निकल रहा है 1 आवर में, और मेरा एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप 1 घंटा रन करते हैं और जैसा आजकल मौसम चल रहा है जी, 1 liter to 1.5 liter बेस्ड ऑन योर स्वेट लॉस की जो कैपेसिटी है, जैसे मेरा स्वेट लॉस ज्यादा होता है, तो 1 liter to 1.5 liter स्वेट आप हर घंटे लॉस करेंगे। तो आपको हर 15-20 मिनट के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, इवन हम लोग सॉल्ट के कैप्सूल भी लेते हैं
0: okay.
1: तो व्हेन आई से सॉल्ट कैप्सूल, हमारे नॉर्मल व्हाइट वाला सॉल्ट नहीं होता है okay. उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, पोटेशियम सोडियम और भी सारी चीजें होती हैं
0: जी.
1: तो हमें हर घंटे हर 35 मिनट बेस्ड ऑन द कैसा बाहर वेदर है वो भी लेके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी उसके बारे में, 42 किलोमीटर जब मैंने सोचा पहली बार एंड अगेन, तो मैंने और मुझे लगा कि यार 42 करते हैं तो कोई रेपुटेड मैराथन ही करेंगे। तो एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है टाटा मुंबई मैराथन है, जो हर साल जनवरी में मुंबई में होती है
0: okay.
1: और अराउंड 60-70 कंट्रीज के लोग आते हैं। यू वोंट बिलीव गौरव, लास्ट ईयर 70,000 लोग भागे थे okay. तो यू कैन इमेजिन के बॉम्बे जैसा शहर जो बिजी इतना रहता है, वहां पे 6-6.5 घंटे के लिए वो ट्रैफिक को रोक देते हैं
0: जी।
1: तो कितना बड़े लेवल पे उसका अरेंजमेंट होता है एंड वो एक अलग ही मेला होता है वहां पे। तो आई थॉट के टाटा मुंबई 2025 मैंने पहली 42 किलोमीटर की थी और टीएमएम मैं करने चला गया था। तो बस अगेन मैंने इन्हीं सब बातों का ध्यान रखा कि मैं कहीं पढ़ रहा था किसी डॉक्टर के बारे में, तो उसने लिखा कि ऐसा नहीं आप ऐसा प्रिपेयर करके मत जाना कि फिर आपकी पहली और आखिरी मैराथन हो आपने पुश करके 42 किलोमीटर कर तो लिया बट ऐसा लगा यार बस अब नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल, वो मुझे बड़ा अच्छी लगी थी कि एम्स के डॉक्टर थे। तो मैंने प्रॉपर कार्ब्स का ध्यान दिया, जिसमें बीच में बनाना खा लेते हैं हम लोग, डेट्स खा लेते हैं बीच में, थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं बीच में, कई बार संतरे वगैरह मिलते हैं, फ्रूट वगैरह मिलते हैं। अच्छा हमें खाना भी ऐसा होता है गौरव जो डाइजेस्ट उसी टाइम हो जाए, हमें एनर्जी भी उसी टाइम मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता ना आपने खाना खाया और मुझे जिसके अंदर चार घंटे मिलने वाली है, तब तक तो रेस ही खत्म हो जाएगी।
0: इंस्टेंट एनर्जी,
1: सो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी चाहिए, तो आप ऐसा कुछ हैवी भी नहीं खा सकते भागे। फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, प्लेन पानी नहीं पीना है तो आपको नींबू पानी या जो प्रॉपर जो आजकल इलेक्ट्रोल वगैरह आते हैं, आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देती है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो हमें बीच बीच सॉल्ट के कैप्सूल भी खाने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को मैं जब पढ़ के मैं प्रिपेयर होकर गया तो मेरे माइंड में था कि यार फेल नहीं होना है
0: जी।
1: मुझे वो दंगल मूवी का बड़ा अच्छा डायलॉग हमेशा याद आता है कि हारना नहीं है,
0: हारना नहीं है,
1: हारना नहीं है, ठीक है, करना नहीं है वो अलग बात है, बट हारना नहीं,
0: हारना नहीं है।
1: तो जो आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गए हो आप उसे पूरा करके आओ। तो मैं 42 किलोमीटर करने गया और टचवुड मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बहुत बेकार भी नहीं किया। तो मैंने 4 hours 48 minutes में अपनी पहली फुल मैराथन की थी और मुझे लोगों ने बोला था नहीं दिवाकर, एनीथिंग बिलो 5 इन फर्स्ट फुल मैराथन में आपका बहुत अच्छा टाइम है, दैट इज कंसिडर्ड गुड टाइम, और हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो देन इसको फर्दर इंप्रूव करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से मेरा पहला मैराथन कंप्लीट हुआ था।
0: तो सर मैराथन से अल्ट्रा मैराथन तक का ये दौर कैसा था?
1: मेरे दिमाग में व्हाट नेक्स्ट। तो 42 हो गया, अच्छा अब ये 42 कर लिया, अब अच्छा फिर मैंने ऐसी फ्रेंड्स वगैरह से पूछा है, कोई नेट पे पढ़ता, मैं आईटी वाला आदमी तो थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह पे ज्यादा रहता हूँ, तो मैंने जाके देखा। अब आप सोचो मैं इंटरनेट का क्या यूज कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा हूँ, इन चीजों पे जाके स्टडी कर रहा हूँ। तो देन मैंने जाके देखा कि उसके बाद आया कि यार अब आगे ना कोई लिमिट नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब क्या नंबर दें, 42 को उन्होंने मैराथन बोल दिया, आगे वाले को क्या बोले? तो एनीथिंग अबव 42 किलोमीटर इज नोन एज अल्ट्रा मैराथन। तो फिर अगेन मुझे थोड़ा कंजर्वेटिव जैसे मैंने बोला, तो मैंने कहा 50 करके देखते हैं, 50 किलोमीटर। तो देखा 50 किलोमीटर की टाटा अल्ट्रा करके एक होती है
0: जी।
1: तो वो लोनावला में होती है, लोग लोनावला घूमने जाते हैं, मैंने लोनावला भाग के पूरा किया हुआ है। तो लोग टाइगर पॉइंट वगैरह में घूमने जाते हैं, तो मैंने 50 किलोमीटर, आप सोचो लोनावला 50 किलोमीटर ही है, मैंने पूरा 50 किलोमीटर भाग के पूरा किया लोनावला। तो आई थॉट कि टाटा एक कंपनी है और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगेन मैंने बताया कि वहां खाने पीने का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट सब अच्छा होना चाहिए। तो मैंने टाटा अल्ट्रा बुक की और मैं 50 किलोमीटर की टाटा अल्ट्रा करके आया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
0: अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है ना,
1: अचीवमेंट इतना अच्छा लगता है मुझे कि मेरे अभी उसके बाद मैंने इवन वो टेस्ट वेस्ट जब कराए तो सारे पैरामीटर अच्छे हो गए, मेरा वेट मतलब मैं 75-77 के अराउंड वेट को ले आया हूँ। देन अगेन देन आई रियलाइज कि यार 70 केजी कभी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं उसके बारे में फिर मैंने एक अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होता है, फिर मैं बॉडी में थोड़ा डिटेल में चला गया कि मेरी बॉडी में एक्चुअली आज भी क्या एक्स्ट्रा है। तो पता चला मैं फैट कंटेंट अपना 14.8% पे लेके आ चुका हूँ, मेरी बॉडी में थोड़ा वाटर है, वाटर रिटेंशन मेरी बॉडी करती है, तो विच इज somehow good for me, क्योंकि मेरा sweat loss ज़्यादा होता है, तो मुझे dehydration की problem comparatively कम होती है as compared to normal। तो ये definitely you rightly said, इतनी अच्छी feeling आती है जब मैं ultra marathon 50 किलोमीटर करके आता हूँ। You won't believe कि 50 किलोमीटर की preparation करने में 60 किलोमीटर चला गया था।
0: क्या बात है।
1: So इस तरीके से मैंने जर्नी चालू की और अल्ट्रा मैराथन अब आगे आगे आगे फर्दर किलोमीटर मैं भागता रहूंगा डेफिनेटली।
0: तो आगे कैसा रहेगा सफर इनका, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 99.6 पर चला रहा हूँ एक गाना, और वापस आकर बात करते हैं।

0: रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात, मैं हूं गौरव आपके साथ एंड मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिवाकर महेंद्र जी। 3 साल पहले रनिंग शुरू की और आज अल्ट्रा मैराथन रनर 51 की एज में ये सिर्फ किलोमीटर्स नहीं अपनी लिमिट्स को चैलेंज कर रहे हैं। ये एक ऐसे रनर है जिनके लिए एज सिर्फ एक नंबर है और फिनिश लाइन एक नई बिगनिंग। सर, एक सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पर आपसे कि जब से आपने रनिंग शुरू करी है अपनी लाइफ में क्या चीज़ आपकी बदली है जो आपको लगता है?
1: लाइफ में अच्छी बात क्या है ना, मैं जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं उसकी तरफ मेरा ध्यान कम हो गया। जैसे कई बार शायद वो गलत है सही है मुझे नहीं पता, मेरे घर में बोलते हैं चलो यार बाहर खाना चलते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि यार बाहर खाने क्या जाएंगे, जबकि मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मुझे छोले भटूरे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं खाता हूं, तो मैं वंस इन ए मंथ, वंस इन ए टू मंथ, फिर मैं क्या करता हूं अपनी डॉटर को ले जाता हूं साथ में, छोटे वाली को, मैं काम करते हैं दो में से एक तो खा ली एक मैं खा लूंगा, तो उसमें अपनी मैं वो इच्छा पूरी कर लूं। जैसे एग्जांपल बड़ा अच्छा देता हूं कि मुझे मीठा भी अच्छा लगता है, अब मैंने शुगर बिल्कुल बंद की हुई है। यू वोंट बिलीव कि मेरे को, मेरे घर में जो शुगर का मेरा डब्बा है ना, मैंने को कब से देखा ही नहीं खोल के उसे। एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, आप शादी में जाते हैं आप गुलाब जामुन खाते हैं? दो या चार गुलाब जामुन खा लेते हैं?
0: मैं तो नहीं खाता, बट हां लोगों को देखते हैं।
1: आपके मुंह में किसका टेस्ट रहता है? तो लोग मुझे बोलते हैं कि जो आखिरी गुलाब जामुन का जो आखिरी टुकड़ा होता है ना उसका टेस्ट रह जाता है, तो मैं उतना ही गुलाब जामुन खाता हूँ। सो पॉइंट ये कि मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें, ये मैंने अपने बॉडी के अंदर चेंज देखे हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा कैलोरीज वाले खाना है, क्योंकि मैंने अपना बॉडी के वेट को कम करना है, और ये सिंपल लॉजिक है वेट लूज करने का, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने कैलोरीज आपकी बॉडी में बर्न कर रहे हो अगर उससे ज्यादा खा रहे हो तो वेट बढ़ेगा, अगर उससे कम खा रहे हो और बर्न ज्यादा कर रहे हो तो वेट घटेगा। ये सिंपल रूल है, इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं। मेरा फायदा क्या लगता है मुझे, मैं एग्जांपल एक वर्ड यूज किया होगा आप लोगों ने पढ़ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी नेचुरली कितने कैलोरीज बर्न कर रही है। तो एवरेज जो बंदे रहते हैं उनका 1600 के करीब कैलोरीज बर्न वो करते हैं नॉर्मली। अगर कोई एथलीट रहता है तो वो 1800 कैलोरीज 1900 कैलोरीज का बीएमआर ले जाता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो हम लोग सुबह पराठे खाते हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, हमारा जो खाना है ना वो कार्ब रिच है
0: जी,
1: कार्ब रिच खाना है, तो हमें कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। शुगर हम लोग खाते हैं, कैलोरीज थोड़ी सी शुगर में खाना कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और एक्चुअली सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं खाने का, तो हमने कैलोरीज भी खा लिए और खाना भी खा लिया। तो एंड ऑफ द डे अगर आप 1800 कैलोरी से ज्यादा खाएंगे बिना कुछ किए तो आप वेट गेन करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहो, मैं तो रोटी ही खाता हूं, मैं तो सिर्फ चावल ही खाता हूं, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, कुछ भी बोलते रहिए, फार्मूला ही है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा एवरेज ये रहता है कि ऑन एन एवरेज डेली, एवरेज की बात कर रहा हूं, जैसे आज मैं बोलूं तो मैंने 1800 कैलोरीज बर्न कर चुका हूं सुबह रनिंग से एडिशनल, तो अगर मेरा बीएमआर 1800 है और 18 में एक्स्ट्रा बर्न कर चुका हूं, तो अगर मैं आज 3600 कैलोरीज भी खाऊंगा आज तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा
0: जी।
1: सो पॉइंट ये है कि अगर आप कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं तो आप बर्न भी कीजिए, तो जरूरी नहीं है मैं ये बोलूंगा कि रनिंग करिए, बट पॉइंट ये है कि आप कैलोरीज बर्न करें तो आपका वेट सिग्निफिकेंटली कम होगा और बहुत अच्छे से कम होगा और गारंटीड है कम होगा। आप बस आपको कैलोरीज का इंटेक का ध्यान रखना है, ऐसी हाई कैलोरीज फूड को अवॉइड करना है, ताकि ऐसा भी आपको खाना भी तो खाना है ना, ये भी तो नहीं होगा भूखे घूमना है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप ज्यादा खाओ, बट वो चीज खाओ जिससे आपको कैलोरीज कम मिल रही है बट सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है।
0: सर, जैसे आपने अभी बोला कि आपने 1800 कैलोरीज आज बर्न कर लिया, अब अगर आप 3000 कैलोरीज भी बर्न कर लेते हैं एक दिन में, मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल,
1: किया मैंने पिछले संडे को 6000 कैलोरीज बर्न किए,
0: 6000 कैलोरीज आपने बर्न करी, एक समोसे में 350 कैलोरीज होते, क्या हम लोग उस दिन 2 समोसे खा सकते हैं?
1: बिल्कुल खा सकते हैं, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, खा सकते हैं, बट मेरा मन ही नहीं करता। यू वोंट बिलीव गौरव, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना तो उस टाइम भी जब हमें क्या होता है, जब हमारी रन खत्म होती है तो वो लोग ना जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो खाना वगैरह भी अरेंज करते हैं, और वहां पे बड़ी कॉमन सी आदत देखी है कि ना हलवा रख देते हैं। मैंने कहा रनर्स को तू हलवा खिला रहा है। सो हम नहीं खाते
0: जी,
1: जबकि आपने से बोला है कि मैं 6000 कैलोरीज बर्न कर रहा हूं और 1800 कैलोरीज मेरा बीएमआर भी है, तो 7800 कैलोरीज में उस दिन खा सकता हूं, बट मैं वो भी नहीं खाता हूं। हम तब भी, हमारे दिमाग में क्या होता है गौरव, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन कहां है, प्रोटीन कहां है, तो दाल खा लेता हूं, अच्छा एग खा लेता हूं, अच्छा कुछ वो खा लेता हूं, ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रहेगा। तो ये मेरी लाइफ में चेंज आया है जिस तरीके से मैंने अल्ट्रा मैराथन और मैराथन के बारे में सोचना शुरू किया।
0: सर, रनिंग ने आपकी लाइफ में आपको ऐसा क्या बताया जो आप अपने बारे में नहीं जानते थे?
1: मतलब मेरी जो, मुझे नहीं लगता था, मुझे ये पता था कि मैं इतने किलोमीटर इतने घंटे भाग सकता हूँ क्या, इतना मेंटली मैं अपनी बॉडी को मतलब स्ट्रांगली कंफर्टेबली, यू वोंट बिलीव, मैंने 14, मैं जो अभी तक हाईएस्ट लॉन्गेस्ट भागा हूँ वो 14 घंटे 20 मिनट के करीब भागा, और 14 घंटे 20 मिनट भी मैंने ट्रेल रन किया था। ट्रेल मतलब जहाँ पे हिल है, पत्थर है, मतलब रास्ता ही नहीं है, जंगल है, ऐसे रास्ते को मैंने कवर किया था, 14 घंटे 20 मिनट में करीब कंटिन्यूस भागा हूं, और अभी मैं पिछले संडे 12 घंटे भाग के आया हूं जिसमें कि 95% ह्यूमिडिटी थी, और दोपहर में बिल्कुल जब सन बिल्कुल क्लियर था, टेम्परेचर वाज अराउंड 35-36 बट फील लाइक
0: 40
1: से ऊपर टेम्परेचर था, और मैं सर पे ठंडा पानी डाल डाल के अपनी रन को पूरा कर रहा हूं। तो एट दैट लेवल मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट कर रही थी और मैं मेंटली स्ट्रांग था कि नहीं दिवाकर तुझे 12 घंटे मिले हैं तो तुझे 12 घंटे तो भागना ही भागना है, तो यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, तुझे भागना ही भागना है, और आई वाज एबल टू कंप्लीट।
0: फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला पहली बार मैं 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर दौड़ने जा रहा हूँ?
1: नहीं नहीं, वो बड़े मोटिवेट होते हैं मेरी फैमिली फ्रेंड्स, और बड़ा अच्छा कहते हैं, नहीं नहीं कि दिवाकर जैसे मामा है मेरे, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा तू कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो सुनते हैं, वो अपना करते हैं। बट अगेन मैं एक वर्ड यूज करूंगा जो इंपॉर्टेंटली मैंने सीखी है गौरव, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी।
0: जी,
1: आप मेरी बातें सुन के दो दिन के लिए मोटिवेट मत होइए।
0: बिल्कुल,
1: आप मेरी बात से अगर आप दो दिन मोटिवेट होने वाले तो प्लीज मेरी बात को इग्नोर कर दीजिए, बट मेरी बात को सुन के मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप कंसिस्टेंट बनिए। क्या आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते? क्या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है? छोटा सा क्वेश्चन है, जब आप बीमार पड़ोगे तब हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए टाइम होगा आपके पास, तो क्या हम उस टाइम को अभी सेव करके एक घंटा डेढ़ घंटा निकाल के अगर हम डिसिप्लिन से लगाएं, मैं नहीं कह रहा हूं अल्ट्रा मैराथन बनिए, बट एटलीस्ट एक घंटा, यार एक घंटे से डेढ़ घंटा निकालिए अपने लिए, और उसको रनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, कोई जिम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बॉडी वेट से भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कीजिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके सारे पैरामीटर तो ठीक कर ही देगा और आप डॉक्टर पे जाने से बच जाओगे।
0: तो ये था एक छोटा सा मैसेज सर की तरफ से, और सर एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं, मॉर्निंग रन या इवनिंग रन?
1: मॉर्निंग रन।
0: ट्रेडमिल या रोड?
1: डेफिनेटली रोड।
0: सोलो रन या ग्रुप फन?
1: ग्रुप रन।
0: ओके, म्यूजिक या साइलेंस?
1: नहीं नहीं, म्यूजिक, जब लॉन्ग रन करते हैं तो मैं तो एक छोटा सा स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर अपने हाइड्रेशन बैग में डाल के चलता हूं।
0: ओके, 10 किलोमीटर फास्ट या फिर 50 किलोमीटर स्लो?
1: 50 किलोमीटर स्लो।
0: ओके, बिजनेस मीटिंग या 50 किलोमीटर रन?
1: वो दोनों ही जरूरी हैं, मैं इसको दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी है, मंडे टू फ्राइडे आई वुड से बिजनेस मीटिंग एंड सैटरडे संडे।
0: मंडे की बात आपने करी तो मंडे मॉर्निंग या फिर मैराथन?
1: नहीं, हम लोग नॉर्मली मंडे मॉर्निंग को रेस्ट करते हैं।
0: ओके,
1: और बाकी 6 डेज हम लोग रन करते हैं, तो वीकेंड जैसे मैंने आपको बताया कि वीकेंड मतलब हमारे लिए लॉन्ग रन, तो हम सैटरडे संडे लॉन्ग रन करके मंडे को रेस्ट करते हैं।
0: रनिंग के बाद चाय या फिर कॉफी?
1: कॉफी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर।
0: ओके, तो ये थे हमारे साथ दिवाकर महेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप सारे फरीदाबाद के लिसनर्स आपसे इंस्पायर जरूर होंगे। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक्स गौरव।
0: एंड किलोमीटर्स खत्म हो सकते हैं लेकिन पैशन की कोई फिनिश लाइन नहीं होती, आज हमारे गेस्ट ने हमें यही सिखाया। मैं मिलूंगा आपसे फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज के डिजिटल एरा में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक पावरफुल आइडेंटिटी बन चुका है। कैसे एक सिंपल आइडिया ऑडियंस तक पहुंचता है, कैसे क्रिएटर्स अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और इस जर्नी के पीछे कितनी क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी होती है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं महक अरोड़ा, जो ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और फूड कंटेंट के थ्रू दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर चुकी हैं। वेलकम महक।
1: थैंक यू।
0: चलिए महक, सबसे पहले आपकी जर्नी डिकोड करते हैं। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो पहला स्पार्क या मोमेंट क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया?
1: तो कंटेंट क्रिएशन एज सच मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई कंटेंट क्रिएटर बनूंगी।
0: जी,
1: मैंने तो अपनी नॉर्मल स्टडीज जब कंप्लीट करी, मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो उसके बाद मेरे को मेरे किसी फैमिली मेंबर ने मेरे को बोला कि महक, व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद मेकअप, मेकअप में आजकल कितना पैसा है।
0: जी.
1: तो आप कोई ऐसी लाइन चूज करो, पढ़ाई से हटके लोग इतना इतना कमा रहे हैं। तो हम लोग कजिन्स का नाइट से था उस टाइम, मैं घर गई और मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने बोला हाँ तुझे शौक तो है, मैं ना बहुत नेल आर्ट और ये सब करने का मुझे पहले से शौक था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ अगर तेरे को करना है तो तू कर सकती है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ, मम्मी ने इनिशियली बहुत सपोर्ट किया और मैंने मेकअप सीख लिया।
0: okay.
1: अभी मैं जब मेरा मेकअप के करियर की स्टार्ट ही होता उस टाइम पर लग गया जी लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ने तो अच्छों का काम ठप कर दिया। मेरे जैसे जिनका करियर ही तब स्टार्ट होना था तो उनके लिए तो एक लगा लो ब्रेक लग गया उस टाइम पर। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम घर पे सिर्फ चार लोग हैं जो कि बंद है, मैं, मम्मी, पापा, भाई, ऑब्वियसली दो मेल्स, उनके ऊपर तो कोई कितना मेकअप ही नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मा और मैं सिर्फ हम दो हैं। मेरी मम्मा को तो बिल्कुल मेकअप कराना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती थी, रोज सुबह कुछ नहीं है करने को, उठे, मेकअप लिया और शुरू हो गए। अब उस टाइम पे ना कोई पढ़ाई है करने को ना कुछ, अब जब आपने करियर ही एक ऐसा चूज किया है तो ऑब्वियसली आपको इसी पे करना होगा।
0: Exactly.
1: तो मैंने घर से ही अपना कंटेंट क्रिएशन मेकअप में शुरू किया और फिर मैं अपनी मम्मी के ऊपर मेकअप करती थी, अपने ऊपर करती थी। उन्होंने एक दिन कराया, दूसरे दिन कराया, तीसरे दिन वो बोलती है मैं नहीं करा सकती, इतना इतना तू मेरे को मेकअप लगा देती है, मैं घर पे मेकअप करके नहीं बैठ सकती। फिर मैं अपने ऊपर करती थी, फिर मेरे को ऐसे ही ना आपका एक सर्कल बनने लगा इंस्टाग्राम पे। जैसे जैसे आपने पोस्ट करना शुरू किया, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मेरी इंस्टाग्राम पे कहीं ग्रोथ हुई है तो वो लॉकडाउन के डेज में हुई है, क्योंकि तब सब खाली बैठे हुए थे, हर कोई इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव था। तो तब वहां पर हमारी एक कम्युनिटी बन गई। तो वहां पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जो मेरे बन गए, तो मैं उनसे पूछती थी कि यार हाउ डू यू गेट ऑल दीज कोलेबोरेशन, क्या होता है ये, इसका प्रोसेस क्या होता है, हाउ डू यू गेट दिस। क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपनी ताजी ताजी मेकअप वैनिटी बनाई थी, इतना पैसा लगाया था उस पर, तो मैंने सोचा यार अगर ये मेरे को कोलैब्स नहीं मिल जाते तो कितना अच्छा होता।
0: Exactly.
1: शायद मेरा इतने इन्वेस्टमेंट जो मैंने मेकअप पे कर दिया वो नहीं करनी पड़ती। तो बस मैंने एक दो से पूछा, पर लेट मी टेल यू, कोई नहीं बताता।
0: हाँ जी,
1: कैसे कोई अपना फायदा देखता है। हर कोई बोलता था कि मुझे तो ब्रांड्स ने रीच आउट किया है, पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ब्रांड्स डे वन से आपको नहीं रीच आउट करने लगी थी, राइट? तो मैं सोचती थी कि मेरे को तो किसी ब्रांड ने आज तक रीच आउट नहीं किया, लाइक मेरे को भी ऑलमोस्ट एक साल हो गया था तब तक कंटेंट क्रिएशन में, मतलब मेकअप कंटेंट क्रिएशन में, पर तब तक भी मुझे तो किसी ब्रांड ने एज सच कोई रीच आउट नहीं किया, क्योंकि मैं मेकअप वीडियोस डालती थी। तो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड हु टोल्ड मी कि महक, यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड्स, आप उनको मैसेज डालो, इस तरह का एक फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ और आप इस पर मैसेज डालो और आप उनको बोलो कि लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स कनेक्ट फॉर सम फन कंटेंट। तो मैंने बोला ठीक है। अभी मेरा रोज का टारगेट होता था, मैं दिन के 10-20 ब्रांड्स को सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करती थी कि आई एम महक अरोड़ा विद सो एंड सो फॉलोअर्स और आई एम ऑन दिस दिस दिस प्लेटफॉर्म और आई यूज्ड टू डू दैट।
0: जी,
1: मतलब इनिशियल डेज में मेरे को लगता है कि हर किसी को अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट करनी पड़ती है।
0: हाँ जी।
1: तो दैट्स हाउ इवन आई स्टार्टेड। तो दिन के 20 ब्रांड्स को करते थे मैसेज और जिसमें से कोई एक या दो भी ऐसे रिप्लाई कर देती थी कि राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर कोलैब्स बट लाइक इन फ्यूचर हम कभी देखेंगे तो वी लेट यू नो।
0: जी,
1: तो एक वो वाला टाइम भी था। और अब आज एक टाइम है कि मैं 800 से ऊपर ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ।
0: सो नाइस।
1: सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड और फिर तो एक के बाद एक चीजें कैसे होती गई फिर मुझे भी नहीं पता।
0: बहुत बढ़िया। आज के डिजिटल टाइम में कॉन्टेंट क्रिएशन लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है?
1: आई थिंक अट्रैक्ट करे भी कैसे ना, एक तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही अलग से।
0: Exactly.
1: बेसिक फोन तो आजकल हर किसी के पास है ही।
0: प्लस
1: आजकल मुझे लगता है कि इंडिया में तो हर घर में ही सबके पास इतना टैलेंट है, तो घर घर में बैठे हुए लोग भी इतना कुछ कर रहे हैं आजकल मुझे लगता है, तो कंटेंट क्रिएशन कैसे ना अट्रैक्ट करें। प्लस इसके जो रिटर्न्स हैं वो इतने जबरदस्त है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो कैसे किसी को ना अट्रैक्ट करें। तो सबको मुझे लगता है कि हर घर में कंटेंट क्रिएशन है, हर किसी के पास अगर टैलेंट है तो उसको बेस्ट वे में यूज करो, आओ और कंटेंट क्रिएटर बन जाओ।
0: बिल्कुल सही बात है। आपके अकॉर्डिंग एक गुड कंटेंट क्रिएटर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट फॉलो एनी ट्रेंड्स, बी अ ट्रेंड सेटर रादर। आपको अपने ट्रेंड्स आप खुद सेट करो, आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए कि भाई मैं किस चीज में बेस्ट दे सकती हूँ, रादर देन जस्ट फॉलोइंग कि और क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको फॉलो करते रहोगे तो आई थिंक उसी में ही रह जाओगे। तो आप अपने आप को देखो, अपने में देखो कि आपकी क्या बेस्ट क्वालिटीज है, आप उसको अपनी यूएसपी बनाओ और उसी में ही ग्रो करो, रादर देन लुकिंग हेयर एंड देयर ना कि उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। दूसरी बात, आप कितना भी ग्रो कर जाओ लाइफ में, अभी बहुत बार ऐसा होता है हम लोग एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम 4-5 घंटे से नॉनस्टॉप बस घूम रहे हैं, लोअर बैक बिल्कुल खत्म हुई हुई है इस टाइम पे, पर स्टिल अगर उस टाइम पे मेरे से कोई मिल रहा है ना तो मैं बहुत स्माइल करके मिलूंगी उससे, मैं बहुत हंस के मिलूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये चीज यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरी टीम को पता है, मेरी फैमिली को पता है, भले ही मैं अंदर कितने भी पेन में हूँ पर मैं वहां पर बहुत खुश होके सबसे मिलूंगी, क्योंकि वो ही मतलब इन्होंने ही तो मुझे बनाया है जो बनाया है आज, है ना। तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, आप कितने भी फॉलोअर्स ग्रो हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी लेवल पे पहुंचो, ये चीज मत भूलना कभी।
0: बिल्कुल सही बात है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है महक के साथ। अब वक्त है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिगनर्स और कॉन्टेंट क्रिएशन के प्रैक्टिकल साइड की।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है महक अरोड़ा। महक, अब थोड़ा बिगनर्स और प्रैक्टिकल साइड की बात करते हैं। तो जो बिगनर्स कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि बिगनिंग कहां से करें, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप अपना एक नीश डिसाइड कर लो कि मुझे किस कैटेगरी पे काम करना है
0: जी।
1: फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, आप उसी के अराउंड कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। लेट्स से फैशन है तो आपके घर पे जितने कपड़े हैं निकालो उन्हें बाहर, उनको अलग अलग पेयर करो। आजकल तो इतने टिप्स टू लाइक गेट रेडी विद मी और ये वो टिप्स हैं कि कैसे स्टाइल करें, क्या कैसे एक्सेसराइज करें। तो आई थिंक ऐसे आप ऑर्गेनिकली अपना कॉन्टेंट करना शुरू करो, ब्रांड्स खुद आपके पीछे आएंगी। लाइक वंस दे गेट टू नो अबाउट यू, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट स्टेप यही है कि सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनिक कॉन्टेंट इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ब्रांड्स खुद से आपके पास आए।
0: बिल्कुल सही बात है। क्या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक्सपेंसिव कैमरा और सेटअप होना जरूरी होता है या मोबाइल से भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया जा सकता है?
1: आई डोंट थिंक सो। हम तो खुद भी आज तक भी फोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने तो कोई कैमरा या कुछ नहीं लिया है। इनफैक्ट बीच में सोचा भी था पर मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि पहले आप कैमरा से यू नो लैपटॉप में डालो, फिर वहाँ पे एडिटिंग करो, फिर आप एनी हाउ उसको पोस्ट करो। तो मेरे को ऐसा लगता है फोन से उसी टाइम आपने शूट किया, वहीं पर ही एडिट किया और पोस्ट कर दिया, जितना हैंडी और सब मेरे को फोन लगता है ना। और आजकल फोन तो हर किसी के पास है, तो बेसिकली बस आप फोन उठाओ और शुरू कर दो। वो तो फिर जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, तो आप नए फोन्स पे अपग्रेड होगे। अदरवाइज एक बेसिक फोन से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो।
0: बिल्कुल। और एक क्रिएटर को अपना नीश कैसे चूज करना चाहिए, लाइक फैशन, फूड, लाइफस्टाइल या किसी और कैटेगरी में कैसे वो डिसाइड कर सकता है?
1: तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बेस्ट किस में हो। आपको लग रहा है कि आप फूडी हो तो घुस जाओ फूड में।
0: बिल्कुल।
1: आप कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मैंने अपने फूड कंटेंट की क्रिएशन जर्नी पूरा ऐसे ही शुरू की कि मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे जितना भी बाहर का खाया हुआ था पिक्चर्स उस टाइम पे लेते ही थे स्नैप। तो मैंने सोचा मेरे पास तो साल भर का कंटेंट तो ऐसे ही निकल जाएगा, इतनी सारी स्नैप्स है मेरे फोन में खाने पीने की। बट देन जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो ना तब आपको चीज समझ आती है कि सिर्फ वो पिक्चर्स डालने से नहीं चल पाएगा। फिर आपको प्रॉपर एंगल भी आना चाहिए फोटोज खींचने का, और सिर्फ फोटोज से नहीं चल पाएगा, फिर आपको वीडियोस भी बनानी है, सब कुछ करनी है। तो जैसा कि आपने बोला कि हम कैसे अपना एक नीश, एक कैटेगरी चूज करें, तो आप जिस भी चीज में बेस्ट हो, आपको लगता है ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, फूड, जिसमें भी आपको लगता है आप धमाल कर सकते हो, कोई एक कैटेगरी चूज करो। फॉर एग्जांपल मेरे दो अकाउंट्स हैं, वन इज फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड द अदर वन इज फॉर फूड। तो आप सेपरेट रख के चलो चीजों को। अगर आपको लगता है आप दो या तीन अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो तो सेपरेट रखो, लेकिन एक ही के अंदर खिचड़ी मत पकाओ कि फूड है तो भाई उसी में आज एक फैशन का लाभ आया चलो ये कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: है ना, कुछ लाइफस्टाइल का आया चलो ये कर लेते हैं, तो वो बहुत खिचड़ी पक जाती है। मुझे लगता है आपका एक नीश डिसाइड होना चाहिए, फूड है तो उसको फूड रखो, फैशन है तो फैशन रखो।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात होगी ट्रेंड्स, ओरिजिनलिटी और ब्रांड कोलैबोरेशंस की।

0: बॉयफ्रेंड हूं इसलिए गुलाम हूं।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंटेंट क्रिएटर महक अरोड़ा। महक, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत फास्ट मूविंग है, तो आजकल ट्रेंड्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं, ऐसे में ओरिजिनलिटी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है?
1: आई थिंक जितना आप ओरिजिनल रह पाओगे आप उतना अच्छा कंटेंट निकाल पाओगे, रादर देन जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स, बी अ ट्रेंड सेटर मैं तो ये बोलती हूँ। तो आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ। ट्रेंड्स मत फॉलो करो या ट्रेंड सेट करो कि लोग आपको फॉलो करें, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी एक्स वाई जी, पर बहुत सारे बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स
0: exactly.
1: इसी मतलब जी. हमारी सेम कम्युनिटी के सेम लोकेशन के, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि यार हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता है, तो क्यों नहीं। अगर मुझे भी कहीं से कोई दो शब्द लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं। तो बी अ ट्रेंड सेटर, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, तो सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो। जितना वो करोगे ना आप उससे मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रो करोगे फिर।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर ब्रांड कोलैबोरेशंस की बात करें तो इसको पाने के लिए क्रिएटर्स को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, प्लस ब्रांड्स को अप्रोच करने की राइट टेक्निक क्या होती है?
1: ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका, जैसे कि मैंने बोला, आप अपनी यूएसपी पे काम करो। फॉर एग्जांपल, इनिशियल डेज में मैं क्या करती थी, म्यूजिकल वीडियोस करती थी कि म्यूजिक चल रहा है उस पे वीडियोस बना लिया। बट देन मैंने एक वीडियो हिट एंड ट्रायल से ऐसे डाल के देखी कि वॉइस ओवर करके देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, रीच ही तो नहीं आएगी। और वो एक रील रातों रात 1.5 लाख व्यूज ले गई, जो कि मेरी आज तक कोई रील नहीं लेके गई थी
0: क्या
1: अभी
0: बात
1: तक
0: है, क्या बात।
1: तो फिर मुझे लगा कि शायद अब पसंद, मतलब आवाज मेरी पसंद कर रहे, तो तब से लेके आज तक वो मेरी यूएसपी है। मुझे पता है कि मेरे को ब्रांड्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, मुझे पता है कि मेरे को कैसे अपनी ऑडियंस को रोक के रखना है। तो मेरी यूएसपी मैं मतलब खुल के बोल सकती हूँ कि वॉइस ओवर्स है। जिस टाइम मेरा गला खराब होता है तो लोग मुझे आके बोलते हैं महक आर यू ओके। तो हर किसी की अपनी एक यूएसपी होती है। ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए भी आपको मैक्स टू मैक्स यही करना है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, जितना रियल रह सकते हो वो करो। आप ये नहीं कि इसकी भी तारीफ कर रहे हो उसकी भी तारीफ कर रहे हो आप। नाउ आई एम वेरी सिलेक्टिव टू माय ब्रांड, ऐसा मैं हर ब्रांड के साथ काम नहीं करती
0: जी।
1: और बहुत सारी चीजें कई बार ऐसा भी हो जाता है कमर्शियल्स पे अटक गई, तो ये वाली चीजें हो जाती हैं। तो मैं, मेरे को पता है कि अगर दीज आर माय कमर्शियल्स आई विल वर्क ऑन दिस। अगर मेरे को लगता है कि ये ब्रांड मेरे को उतना नहीं लग रहा है कि भाई दिखाने लायक या ऑडियंस में, अगर लेट्स से कि कोई एक ऐसी ब्रांड है जिसके कपड़े मैं ही नहीं पहनना पसंद करूंगी, तो वो मैं किसी और को क्या बताऊं?
0: Exactly.
1: तो मैं उस चीज में ऑब्वियसली रियल रह ही नहीं पाऊंगी, है ना, अनटिल अनलेस कि मैं उसके कपड़े मैंने नहीं खुद के लिए, मेरे को लगता है कि मैं शॉपिंग कर लूंगी उनसे, तो तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी उनको। तो बहुत सारे ब्रांड्स मैं इस बेसिस पे मना करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रांड कोलैबोरेशंस पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी, कि जो आप खुद करते हो आपको वैसी ब्रांड मिल रही है तो आप उसको करो। और दूसरा, आपने बोला ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए राइट टेक्निक क्या होती है, तो इनिशियल डेज में होता है कि आप ब्रांड्स को मैसेज कर सकते हो कि आई एम सो ऑन सो ऑन इंस्टाग्राम एज आई टोल्ड यू अभी पीछे ना।
0: हाँ,
1: इनिशियल डेज में हमने भी ऐसे किया है, पर ये बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज वाली बात है कि आपको ब्रांड्स को जब तक अपना बताना है। लेकिन फिर एक टाइम वो आ जाता है, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वो ऐसी जगह पर वायरल हो रही है जहां पर 100 लोगों तक तो वो पहुंच रही है, तो उनमें से कोई हो सकता है 10 तो होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपने बिजनेस के लिए आपको बुलाएंगे, तो ऐसे ही वो चेन बनती चली जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है रादर देन राइटिंग ऑल दोस इतने बड़े बड़े मैसेजेस कि आई एम सो एंड सो, कोई भी इतना वेला नहीं है कि इतने लंबे मैसेज पढ़ो, सीधा उनको लिखो कि कैन वी कोलैबोरेट।
0: बिल्कुल,
1: तो सीधा ऐसा लिखो तो उनको, वो आपकी प्रोफाइल ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे और वो आपको रीच आउट कर लेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। आपके अकॉर्डिंग फॉलोअर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या ऑडियंस एंगेजमेंट?
1: आई थिंक मेरे फॉलोअर्स 2 साल से 60-65 के बीच में ही स्टक थे। तो ऑब्वियसली किसी को भी लगता ही है जब आप आसपास वाले लोगों को देखते हो कि भाई इनके तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं और आपके क्यों स्टक हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इस टाइम पर तो वो चीज आपको बहुत खटकती है। बट देन देयर वाज अ टाइम जब नहीं फॉलोअर्स उतने ग्रो हो रहे थे, बट देन लोगों का प्यार फिर भी मिल रहा था, एंगेजमेंट मिल रही थी, और यू नो आप कहीं पर भी जा रहे हो लोग आपको पहचान रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको लगता है कि फॉलोअर्स काउंट इज जस्ट अ नंबर।
0: बिल्कुल,
1: तो फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, अपना कंटेंट क्रिएट करो। टिल द टाइम यू आर गेटिंग गुड वर्क, टिल द टाइम यू आर गेटिंग गुड पे आउट, भूल जाओ कि फॉलोअर्स कितने हैं कितने नहीं, फॉलोअर्स तो आते रहेंगे, बस अपना कंटेंट क्रिएशन मत छोड़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पर जो कि हार मान जाते हैं कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, हमने इतना टाइम एनर्जी लगा दिया इस पे, तो छोड़ दो। ये मैं अपने लिए भी कहूँगी, मैंने अपना यूट्यूब ऐसे ही छोड़ दिया कि मुझे लगा कि मेरे उतने सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, मैंने इतना इतना टाइम कर दिया और 700 सब्सक्राइबर्स है तो बढ़ ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर दूँ, तो उस केस में मैंने यूट्यूब छोड़ ही दिया। पर आज मुझे लगता है कि जितनी कंसिस्टेंट मैं इंस्टाग्राम पे रही थी उतनी यूट्यूब पे भी रही होती तो आज वहाँ पर भी मैं वारे नारे होते मेरे।
0: बिल्कुल सही बात है। कॉन्वर्सेशन अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले लेते हैं क्विक म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद बात होगी वायरल कॉन्टेंट बर्न आउट और एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस की। यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.0

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं, अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
6: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और हमारे साथ हैं महक अरोड़ा। महक, अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के डीपर साइड की, तो वायरल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट में बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है?
1: आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वायरल तो आजकल कोई भी हो रहा है कुछ भी करके, जैसे कि बीच में एक ट्रेंड चला था 1 सेकंड वीडियो,
0: हाँ जी,
1: टन टन टन टन,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: इतनी वीडियोस लोगों की वायरल हो गई ये सब करके, पर एक्चुअली इज इट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू द सोसाइटी? नो। तो आई थिंक जितना आप इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट बनाओगे वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि आप बताओ कि किधर क्या है, कहाँ पर क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, अगर आपने भी देखी हो तो, जिसमें मैं फरीदाबाद के हिडन जेम्स दिखा रही हूँ, मे बी अलग अलग आप टेम्पल्स दिखाओ, कुछ मॉन्यूमेंट्स, तो आप ऐसी चीजें कुछ करो तो वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अदर देन, क्योंकि मुझे लगता है कि रोज मेरी ऑडियंस सिर्फ स्टोर प्रमोशंस और ये सब देख के उन्हें भी ये ना लगे कि भाई महक कुछ और फरीदाबाद की ऐसी चीजें तो दिखा ही नहीं रही, सिर्फ रोज पेड वर्क ले रही है
0: जी।
1: तो उसके लिए आपको एक्चुअली में दूसरी चीजों को भी उठाना पड़ेगा, कुछ कॉन्टेंट ऐसा हो कि एटलीस्ट सामने वाले को ये ना लगे कि भाई कुछ भी किया हुआ है, कि वो स्किप कर दे।
0: बिल्कुल,
1: तो वायरल तो आजकल कुछ भी हो रहा है, पर वैल्यूएबल कॉन्टेंट में ये होना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट आप अपना जितनी नॉलेज ऑडियंस को दे सकते हो उतना दो, ताकि वो मैक्स टू मैक्स आपको फॉलो करे और आगे भी कनेक्टेड रहे कि हाँ भाई यहाँ से हमें कुछ एक्चुअल में अच्छा मिलेगा। क्योंकि वायरल कंटेंट का क्या है, आज एक रील देखी, स्क्रॉल कर दी हमने, लाइक कर दी, हंस लिए, चलो थोड़ी, पर हम उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हम फॉलो उसको करते हैं कि जिसमें एक्चुअली में हमें लगेगा। फॉर एग्जांपल फरीदाबाद का अगर मैं दिखाती हूँ, लोगों को लगेगा कि फरीदाबाद का, तो हाँ नेक्स्ट वीडियो भी इसकी फरीदाबाद की ही आएगी।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए मैं इसको फॉलो करके रख लेता हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेंटल हेल्थ और बर्नआउट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके अकॉर्डिंग क्रिएटर्स को ये चीज कैसे बैलेंस करनी चाहिए?
1: मेंटल हेल्थ तो हमारी भी बहुत टाइम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरा पूरा दिन आप शूट्स कर रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: कई बार 3 से 4 शूट्स हैं आपके दिन में और पूरी रात जा रही है एडिटिंग्स में।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मेन जो मेरा काम है वो है वॉइस ओवर्स का, वो आप घर पे ऐसे नहीं कर सकते, पूरा शांति वाली जगह आपको चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अब मेरे घर पे 2 छोटे छोटे बेबीज हैं, जिस टाइम पे उनको दिखेगा कि बुआ इस टाइम पे कुछ रूम लॉक किया हुआ है, उन्होंने अभी वो बिजी है, तो उस टाइम पर तो उनको उस रूम में तो जरूर घुसना है, यहाँ पे तो क्या चल रहा है मैं देखूं। तो आपको इस टाइम पर सिर्फ रात मिलती है, और आप कई बार मेरे को 4 बज जा रहे हैं, कभी 5 बज जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको फिर सेम रूटीन फॉलो करना है, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत डिस्टर्ब होती है कई बार। लेकिन बैलेंस हम सिर्फ ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं कि मैं अपने आप को ओवरबर्डन ना करूं।
0: बिल्कुल,
1: कि मैं दिन के 4 में, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरा ऐसा हो गया है काम इकट्ठा, तो मैं 1 दिन की छुट्टी लूंगी, 2 दिन की छुट्टी लूंगी, मैं पिछला अपना सारा खत्म करूंगी, जब तक वो निल नहीं हो जाता मैं नए शूट पे नहीं जाऊंगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा तो ऐसा प्रोफेशन है कि हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, हम तो पूरे फ्लेक्सिबल हैं, है ना। तो मैं नेक्स्ट शूट से उसके अकॉर्डिंग प्लान करूं कि फिर मेरी थोड़ा मेंटल हेल्थ उस टाइम पर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि फिर आप, या फिर आप ऐसा करो, एक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक आउटिंग प्लान कर लो, क्योंकि लोगों को दिखता है कि कंटेंट क्रिएशन जो है इट इज अ वेरी फन जॉब, विच एक्चुअली इज, नो डाउट इट इज फन जॉब, बट देन है तो जॉब ही ना।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को लगता है कि ये तो घूमने का काम है, खाने जा रहे हैं, इधर ये करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक दिन आकर देखो आपको पता चलेगा कि कितनी सिर खपाई है, इतने इतने कपड़े बदलने पड़ेंगे, इतनी गर्मी में भी खाना खाने गए हो तो आपको दिख रहा है कि आपके सामने 10 चीजें रखी हुई हैं, पर आप खाने के पहले शूट करोगे।
0: बिल्कुल,
1: जब तक आपका खाने के टाइम आई तो 10 चीजें वो ठंडी हो चुकी हैं, आपके सामने खाना है पर आपका मन ही भर चुका है वो खुशबुओं से, और ठंडा खाना देख के आप वैसे भी नहीं खा पाओ।
0: बिल्कुल,
1: तो कई बार ये सारी चीजें बहुत हो जाती है, तो ये चैलेंजिंग है, बट देन इट इज अ गुड जॉब, तो बैलेंस तो खुद को ही करके रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल बनना हो तो आपके अकॉर्डिंग वो एक कौन सी चीज है जो उसे कभी लूज नहीं करनी चाहिए?
1: आई थिंक अपनी ओरिजिनलिटी।
0: बिल्कुल,
1: आप जो हो आप एग्जैक्टली वो दिखाओ ऑडियंस को, आप फेक मत बनो कि मैं जो हूँ ही नहीं, मैं वो बन के दिखा रही हूँ, कि मे बी मैं उस लाइफस्टाइल में फिट ही नहीं हो पा रही हूँ, बट मैं दिखा रही हूँ लोगों को कि हाँ भाई मैं तो, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के मीटअप्स होते हैं, ऐसा होता है मैं उधर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं जाती हूँ।
0: हाँ जी,
1: तो जिधर आप फिट हो पा रहे हो, आप जितना ओरिजिनल रह पाओगे, जितना कंटेंट वैसे क्रिएट कर पाओगे वो ज्यादा बेटर है। ऐसे अदरवाइज हमारे मीटअप्स बहुत होते हैं, पर मैं इंडिविजुअल वाला काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो आप जितने ओरिजिनल रह पाओगे, जितने ऑथेंटिक, जितने रियल रह पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ, आप उतना अच्छा लाइक एक अपना सर्कल बना पाओगे, उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आप अच्छे से अच्छा काम कर पाओगे।
0: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: तो अगर किसी को भी अभी भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करनी है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. बिल्कुल मत सोचो, आने वाले कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हैं.
0: बिल्कुल
1: आगे भी मैं इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको मैं यही बोलती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो. क्योंकि अगर आप दिन की एक वीडियो डाल पा रहे हो तो डालो, क्योंकि इसमें इतना पैसा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्यों वो वाली जॉब्स में फंसना है, बिजनेस में इतना परेशान हो रहे हैं, वो हो रहे हैं. एक बार आओ करके देखो, फिर आपको बहुत मजा आएगा. फिर आप खुद ही नहीं छोड़ोगे, आप बाकी सारी चीजें छोड़ दोगे, आप बोलोगे मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं करना है.
0: बिल्कुल सही बात है. आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ रील्स और वीडियोस तक लिमिटेड नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन है. महक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल बातें शेयर करने के लिए.
1: थैंक यू.
0: मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर.

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: राजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आप सभी के साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी डेली लाइफ, हेल्थ और फ्यूचर तीनों से जुड़ा हुआ है। हम क्या खाते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, हमारी स्लीप साइकिल, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं। आज के टाइम में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी डेली हैबिट्स को थोड़ा सा बदलकर इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और लॉन्जेविटी यानी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीने के लिए न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल का क्या रोल है। आज हम इन सभी जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर रजनी एंड डॉक्टर तनु से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के शो पोषण की पाठशाला में। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हम रोज हेल्दी खाने की बात करते हैं लेकिन एक आम फैमिली के लिए बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए। और साथ ही अगर मैं बात करूँ हमारे प्लेट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, फ्रूट और वेजिटेबल का बैलेंस कैसे रखना चाहिए हमें, और इसके साथ ही क्या हेल्दी खाना हमेशा एक्सपेंसिव होता है, तो ये जरूर बताइएगा।
1: Thank you for having me here, Anjali. Myself, Dr. Rajni. I'm a nutritional psychologist and dentist. And over 13 years of experience, I'm really seeing कि हम लोग aware तो हो गए कि healthy, healthy, healthy खाना खाना है. लेकिन क्या खाना है? It's still a big gap in the society. हम trends follow करते हैं, हम सब कुछ online देख रहे हैं, Instagram देख रहे हैं, but हम अपने roots को भूल गए हैं, basics को भूल गए हैं. अगर आप भी आप कभी restaurant में जाते हो, आप एक थाली order करते हो, basics ही 300, 350, 400 रुपए की थाली. अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें छोटा पोर्शन साइज होता है बट इंग्रेडिएंट्स और मल्टीपल चीजें उसमें होती हैं, तो दैट इज अ बैलेंस न्यूट्रिशन जिसमें स्टार्ट विद द सैलड्स, अ बेसिक फाइबर थिंग वी नीड इन द डाइट। और विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी बनाती नहीं है, हमें बाहर से चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स उन चीजों को एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करते हैं जो हम रोटी, चावल, सब्जी सब खा रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सिक्स क्लास के बच्चे को बेसिक पढ़ा दिया जाता है मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो हमारी बॉडी में जरूरत है, लेकिन द थिंग इज कि हम सिर्फ पेट भरना जानते हैं, हम बॉडी को नरिश करना नहीं जानते हैं। तो अच्छा खाना महंगा नहीं है, अच्छी नॉलेज होना खाने के बारे में वो एक महंगी चीज है जो हम मिस करते जा रहे हैं। सैलेड होना जरूरी है, एक अच्छी सब्जी, दाल प्रोटीन का सोर्स होना जरूरी है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है। सिर्फ अनाज खाने से बात नहीं बनेगी, हमें मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट्स का खाना जरूरी है जो हमारी बॉडी में हेल्दी हो। थोड़ा चावल, एक रोटी इज सफिशिएंट, सिर्फ चार रोटी एक साथ खा लेना इज नॉट अ सेंस। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी खा रहे हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना है। हम सिर्फ खाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। हम घर से निकलते ही गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से निकलते ही ऑफिस में जाके फिर बैठ जाते हैं। सो हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी रिड्यूस्ड। खाना महंगा नहीं है, खाने खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी ना होना इज महंगी चीज। सो वी हैव टू फोकस ऑन कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े। 6th-7th क्लास में एक टीन एज के बच्चे को समझा दिया जाता है कि बेसिक खाना क्या है और वही काफी रहता है जब तक कि आप 35, 36, 30 प्लस लाइफ में आते हैं, तब आपको एक मेजर प्रोटीन सोर्स की जरूरत होती है। बाकी बेसिक खाना और हेल्दी माइंडफुल ईटिंग इज इनफ।
0: जी डॉक्टर, बहुत कुछ आज आपने बताया है हमें एक हेल्दी ईटिंग के बारे में। और अगर मैं बात करूँ हेल्दी ईटिंग की, तो हेल्दी ईटिंग का मतलब फैंसी एक्सपेंसिव फूड नहीं बल्कि सही बैलेंस और सही चॉइस है, जैसे कि आज हमें डॉक्टर ने बताया। तो बस इस चीज का ख्याल रखिए कि आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, राइट चॉइस के साथ, राइट हैबिट के साथ आप अपने मील को लीजिए और फिर देखिएगा जो खाना आप खा रहे हैं किस तरह से वो एक हैबिट, एक हेल्दी हैबिट बन जाती है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। दिस इज आरजे अंशी और बात कर रहे हैं आज रेडियो महारानी में पोषण की पाठशाला की, जहां आज हम जान रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में। सो डॉक्टर, अगर मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करूं तो ये बताइए कि आज के टाइम पर डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो रहे हैं। इनके पीछे हमारी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और स्लीप का कितना रोल होता है, और साथ ही क्या इन प्रॉब्लम्स को लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू प्रिवेंट या फिर कंट्रोल किया जा सकता है।
1: I'm Dr. Tanu. I'm here on Radio Maharani. Thank you for having me here. देखो, बहुत महंगी चीजें हम आजकल कर रहे हैं। We have these words as longevity and magnesium. We're in that era where trends are followed like matcha. बट जहाँ हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, वहाँ इंडिया टॉप कर रहा है इस टाइम। अ कंट्री जहाँ आयुर्वेदा था, मूवमेंट थी, अच्छा एक हमारा एक विचरण करने का तरीका था, खाना खाने का तरीका था, वेस्टर्न कल्चर की वजह से मैदा बहुत है, क्रोसो खाते हैं हम लोग, जिस फुल ऑफ मैदा एंड शुगर, हमारी डाइट चेंज हो गई, इसलिए ऐसी चीजें हमारे लाइफस्टाइल में आने लगी जो पहले कभी नहीं थी, जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा। बट आज छोटे बच्चे को डायबिटीज क्यों है, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी लाउड इन द कंट्री and no one wants to even think about it. The reason is the extreme exposure to western food that we are doing. I think agar wo hum ek bar soch le ki hame bacche se leke bade tak ko kya khilana hai, so prevent kiya ja sakta hai, hone ke baad sahi dawaiyan, sahi supplement se hum usko control kar sakte hain, aap usko khatam nahi kar sakte, it's not possible ki aap use khatam kar paoge. Second, stress hamari body mein bahut badhta ja raha hai, aajkal har koi lonely hai, relationships are not working, the amount of success that we want from previous is very high. Stress is a lot big factor in these lifestyle disorders. तो lifestyle disorders के लिए कुछ महंगा करने की जरूरत नहीं थी, कुछ basic करना था, सिर्फ अपनी body को प्यार, ऐसी चीजों को हमें अपने lifestyle में लेके आना है, that we should try to sleep early after we finish our work, we stay away from the phone, you can put on some nice music and you feel better morning, you get up, please try to move, please try to do any activity that you like, be it yoga, running, gym, whatever you like. Third, I would suggest in your entire day, please plan small meals, do not eat a lot of food. Maida bilkul chhod do, wo bahar se aaya tha, hamare Indians ke liye nahi hai. Rice aap kha sakte ho, there are very good options for rice aajkal, kala namak rice and all those things. So I think I'll sum it up as a very compiled way that these things are preventable agar hum log uske liye sahi options ko choose kar rahe hain for the body. Yeah, thank you.
0: जी डॉक्टर, बहुत सही आपने बताया। जिस तरह से आपने बताया है, इसका सीधा सा मतलब ये है, जो हमारी आज की छोटी छोटी आदतें हैं, ये कल जाकर हमारे फ्यूचर को एक हेल्दी शेप देने वाली हैं। तो आज से ही ये छोटी छोटी आदतें चेंज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी एंड डॉक्टर तनु। सो डॉक्टर, बात करते हैं लॉन्जिविटी की। सो लॉन्जिविटी की बात ना आजकल बहुत कॉमन हो गई, हर कोई बात करता है लॉन्जिविटी की, लेकिन ये पता होना चाहिए हम सबको कि ज्यादा साल जीना ही लॉन्जिविटी नहीं होता। हेल्दी और एक्टिव लाइफ को लंबा रखने के लिए न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका सबसे ज्यादा ख्याल हमें रखना चाहिए? और इसके साथ ही क्या कोई एज होती है जब हमें अपनी लाइफस्टाइल को सीरियसली चेंज कर देना चाहिए? सो लॉन्जिविटी आई विल सम इन अ वेरी सिंपल वे, इट इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट डज नॉट मीन एक्सटेंडिंग 100 इयर्स टू योर लाइफ, इट सिंपली मींस हाउ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वेदर यू आर 18 ईयर ओल्ड, यू हैव PCOS एंड यू टेक सर्टन थिंग्स, यू टेक सर्टन स्टेप फॉर योर लाइफस्टाइल टू इम्प्रूव, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्जिविटी। राइट नाउ आई विल आंसर सम फ्यू क्वेश्चंस। न्यूट्रिशन से हम कैसे इसको बदल सकते हैं, न्यूट्रिशन से कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? सी, न्यूट्रिशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल। इफ यू हैव गुड मूवमेंट, यू हैव गुड स्लीप, एंड आप अच्छे प्रोटीन, सी प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप 40 ग्राम प्रोटीन एकदम से लेने लगे एक ही डाइट में। प्लीज हाफ करो अपने प्रोटीन को, 15 ग्राम प्रोटीन आपने एक बार में ले लिया एंड उसको सिंप्लीफाई किया विद सम सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी गुड डाइट, एंड देन यू मूव टू एब्जॉर्ब दिस इन द बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक आयरन, सिलेनियम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थायराइड क्यों होता है? बिकॉज आपकी बॉडी में सिलेनियम की डिफिशियंसी है। मैग्नीशियम हम आजकल क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? बिकॉज हम कोई भी चीज ऐसी खाते नहीं है जिससे मैग्नीशियम मिले। सो दीज थिंग्स आर हैव टू बी इन योर सप्लीमेंटेशन, यू हैव टू सप्लीमेंट देम विद सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आर नॉट दवाइयां, दीज आर एक्चुअल फूड दैट शुड बी टेकन विद योर डाइट, दैट यू शुड बी टेकिंग फॉर दैट। सो लॉन्जिविटी में आप बहुत सारे वर्ड्स को सुनते होंगे, कोलेजन सुना होगा आपने, आपने सुना होगा लोग बहुत नई नई आजकल बातें कर रहे हैं कि यू नो वी शुड टेक एस्ट्राजेंथिन। यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग हैं वो पागल नहीं है, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, दे फाउंड आउट दैट दीज थिंग्स कैन एक्चुअली मेक योर स्किन, योर बॉडी मच रिपेयर्ड, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, सनलाइट में, कम सोने से, ऑब्वियसली इतना स्ट्रेस लेने से बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है, इसलिए हमें ये सब चीजें भी न्यूट्रिशन के साथ इंक्लूड करनी चाहिए। यस, ऑब्वियसली स्लीप में आप रिकवरी लेते हो, अगर आप अच्छे से सोते हो तो आपको बहुत इफेक्ट मिलता है। तो जब भी आप कहीं बैठे हो, कोई लॉन्जिविटी की बात करे, इन चीजों को याद रखिए, सप्लीमेंट, गुड फूड, गुड स्लीप एंड मूवमेंट, दिस विल सिंपलीफाई फॉर एवरी एज ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 30 प्लस के बाद बॉडी को प्लीज सीरियसली ज्यादा लो, क्योंकि अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने वाला है, जो आप पहले खाते थे वो स्पीड पे मेटाबोलाइज नहीं होगा। अब आपको बीमारियां लगने का चांस बहुत ज्यादा है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, सो प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू सो मच
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। गोल सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं बल्कि उन सालों को हेल्दी और एक्टिव बनाना भी है। सो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि शुरुआत कल से करेंगे तो कल कभी नहीं आता, वो शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। तो अपनी जो ये डेली बेसिस की छोटी छोटी आदतें हैं इन्हें हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर देखिएगा आपका फ्यूचर एक हेल्दी फ्यूचर होगा। और इसी के साथ ही बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जी डॉक्टर, बहुत सारी बातें आज हमने आपसे की है, लॉन्जिविटी को लेकर जान रहे हैं, लाइफ डिसऑर्डर के बारे में जान रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं अपने लिसनर्स के बारे में, जो आपकी बातें सुनने के बाद ना आज से ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन एक साथ बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकता, तो आप उन्हें सिर्फ 3 प्रैक्टिकल चेंजेस क्या सजेस्ट करेंगे? खाना, एक्सरसाइज, स्लीप या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरह से अपनी लाइफ को वो चेंज कर सकते हैं इन सारी चीजों के थ्रू, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए आपका एक मैसेज क्या होगा हमारे सभी लिसनर्स के लिए?
1: The biggest message is not to follow the Instagram trends, not to depend on the social media. Just do not. सुनी सुनाई इधर उधर की बातों पे नहीं ध्यान देना है. The main basic thing जो आपने स्कूल में सीखी थी, the long 18 years you have spent on your routine. सुबह जल्दी उठिए, breakfast miss नहीं करना है. The most important meal of your day is breakfast. I have seen 30% 40% से ज्यादा लोग breakfast ही नहीं करते. Even मुझे कई बारी मेरे बच्चे को भी breakfast कराने में मुश्किल होती है. But I am telling you, एक अच्छा foundation life का, the first meal of your life, a good sleep. Sleep आने में बहुत problems हैं. आप please yoga की help लीजिए, music therapy लीजिए, massage therapy लीजिए, basic चीजें. रात को नमक के पानी में पैर डाल के सोइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक चीजें फॉलो करिए, नींद अच्छी आए, बिस्तर चेंज करिए, तकिया ठीक से लगाइए, बेसिक सी चीजें हैं. बट अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस रहिए कि ये मेरी बॉडी है, इसका ध्यान मुझे रखना है. बीमारी आने से पहले बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस चीज पे ध्यान देना होगा. और ये हमें टीनएज से, छोटे बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए. और फैमिली में जो अडल्ट हैं उनको ये अब सोचना पड़ेगा कि बाहरी दुनिया बाद में है, अपने अंदर की बॉडी की फीलिंग पहले है. तो फीलिंग को समझिए, अपनी प्लेट के खाने को कॉन्शियस रखिए और फाइबर इंक्लूड करिए, पानी ज्यादा पीजिए, फैट ऑयल घी थोड़ा कम करिए, स्वीट्स को जितना हो सके उतना कम करिए, और बस यही. और वॉक, एक्सरसाइज, योगा कुछ डेली एक्टिविटी में जरूर डालिए. बस दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर आप कर लेंगे और खुल के हंसिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ट्रैवल करिए, एक्सपीरियंस शेयर करिए, दीज आर द मोस्ट गुड थिंग्स फॉर हेल्दी ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ. इमोशनल वेलबींग जरूरी है. जिस भी भगवान को मानते हैं, दिन में 10 मिनट अलाइन होइए उनके साथ, हाथ जोड़ के बैठिए, पूछिए अपने परमात्मा से कि ये शरीर जो मिला है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है. आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रही है, वो उनका ड्यूटी नहीं है, वो आपके लिए मेहनत कर रही है. अगर आपको वो नहीं खाना, आप समझ चुके हैं कि आपको कुछ और खाना है जो हेल्दी है, तो आप अपने आप से एफर्ट डालिए. तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी इनटू अ हेल्दियर लाइफ. थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, और उम्मीद है कि आज की बातचीत ने आपको अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा. और पोषण की पाठशाला में आज हमने जाना कि हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि हेल्दी और एक्टिव लाइफ जरूरी है. हमारी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ तक हमारी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ पर बड़ा असर डालती है. और आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी थी डॉक्टर रचनी और डॉक्टर तनु, जिन्होंने न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और लॉन्जिविटी से जुड़ी इतनी यूजफुल और प्रैक्टिकल बातें हमें बताई हैं. तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर आपका वीडियो महारानी के साथ जुड़ने के लिए. और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए. दिस इज आरजे अंशली साइनिंग ऑफ. I just

0: हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और क्रैश डाइट्स करते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की बॉडी पे सूट कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

के साथ। वेलकम टू रिव्यू अड्डा, जहां मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, उनकी कहानी, उनके कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस को थोड़ा खुलकर समझा जाता है। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और आज का रिव्यू अड्डा थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की

2022 में आई ये फिल्म सीधे इसी रिश्ते को अपना सेंटर बनाती है, एक भाई, उसकी चार बहनें और उनके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमोशन और फैमिली वैल्यूज के भरोसे ये फिल्म एक सॉलिड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन पाती है। चलिए खोलते हैं पहला रिव्यू स्टे ट्यून, क्योंकि रिव्यू अड्डा अभी शुरू हुआ है। स्टे ट्यून गाने का वक्त है, इसके बाद करेंगे रक्षाबंधन का प्रॉपर रिव्यू।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं हूँ आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की स्टोरी की। फिल्म में अक्षय कुमार बने हैं लाला केदारनाथ, एक ऐसा भाई जिसके लिए उसकी चार बहनें सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी अपनी जिंदगी पीछे छूट जाती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मिशन है अपनी बहनों की शादी करवाना और उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना। और यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाती है, क्या प्यार सिर्फ प्रोटेक्ट करने का नाम है या अपने लव्ड वंस को अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने की फ्रीडम देना भी उतना ही जरूरी है। फिल्म का इमोशनल कोर काफी क्लियर है। भाई बहनों के बीच फाइट है, प्यार है, टीजिंग है, शादी ब्याह की परेशानियां हैं और मिडिल क्लास फैमिली प्रेशर भी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की कहानी नहीं रहती, ये सोसाइटी के उन एक्सपेक्टेशंस को भी टच करती है जिसमें बेटियों की जिंदगी को लेकर फैमिली पर एक अलग तरह का प्रेशर बना रहता है। और यहीं से रक्षाबंधन थोड़ा सा ज्यादा लेयर्ड हो जाती है। स्टे ट्यून्ड, वक्त है गाने का। वापस आते हैं तो बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की और इमोशंस की।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर।

0: के साथ। वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना फैमिली ड्रामा अधूरा है, परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे भाई के रूप में नजर आए हैं जो अपनी बहनों की खुशी के लिए खुद की प्रायोरिटीज को पीछे रख देता है। अब इनका कैरेक्टर कई बार ओवर प्रोटेक्टिव लगता है, लेकिन उसी ओवर प्रोटेक्टिवनेस में फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट भी छिपा हुआ है। चार बहनों के साथ इक्वेशन फिल्म को काफी लाइवली बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ सिबलिंग्स की तरह यहां सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स है, नोकझोंक है, इरिटेशन है, और वो वाला प्यार भी जिसमें कोई सामने से बोलेगा नहीं लेकिन जरूरत पड़ते ही सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। और भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर भी कहानी को सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं रखता। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो आपको आपके अपने घर की याद दिलाने की कोशिश करती है। वो सिबलिंग फाइट्स, वो पेरेंट्स का प्रेशर, वो शादी की बातें, वो फीलिंग्स की भाई बहन चाहे कितना भी लड़ लें लेकिन बाहर वाला कुछ बोले तो दोनों एक ही टीम हो जाते हैं। यही फीलिंग इसे रक्षाबंधन स्पेशल बनाती है। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का।
1: The last ride. King.

की माइंड गेम स्ट्रेटजी एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

रिव्यू अड्डा में आपके साथ गीत हूँ और आज रक्षाबंधन है तो हम बात करेंगे रक्षाबंधन फिल्म के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो क्या ये परफेक्ट फैमिली फिल्म है? शायद नहीं। फिल्म कई जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है, कुछ पोर्शंस थोड़े प्रीची फील होते हैं, इमोशंस मोमेंट्स को कभी कभी बहुत जोर देकर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप रक्षाबंधन पर एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें फैमिली, सिबलिंग्स, इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेज पर हो तो इसका कनेक्ट समझ आता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी कोई ट्विस्ट नहीं है, इसकी यूएसपी है वो बेसिक इमोशन, मेरी बहन खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन के ओकेजन पर ये फिल्म

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अभी हमने थोड़ी ही देर पहले ये जाना था कि कैसे एक भाई अपनी बहन के लिए लड़ रहा था। अब इक्वेशन रिवर्स करते हैं क्योंकि अगली फिल्म में एक बहन अपने भाई के लिए लड़ती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिगरा। आलिया भट्ट प्ले सत्या, एक प्रोटेक्टिव सिस्टर, और वेदांग रैना है उसका छोटा भाई अंकुर। कहानी अब पूरी तरह से इंट्रेंस हो जाती है जब अंकुर एक फॉरेन कंट्री की जेल में फंस जाता है और सत्या उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। और यहाँ रक्षाबंधन का इमोशन थोड़ा सा बदल जाता है। ये सिर्फ भाई मेरी रक्षा करेगा वाली कहानी नहीं है, ये कहती है कभी कभी बहन भी भाई की ढाल होती है। तो चलिए देखते हैं जिगरा ने सिबलिंग लव को एक्शन थ्रिलर के साथ कितना इफेक्टिवली ब्लेंड किया है। स्टे ट्यून्ड, गाने का वक्त है, इसके बाद करेंगे जिगरा का रिव्यू।

0: जेगी बिना फिल्टर
1: सच वाला रिव्यू
0: यही है रिव्यू अड्डा
1: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
2: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। जिगरा की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी कहानी से ज्यादा इसका सिबलिंग इक्वेशन है। सत्या और अंकुर का रिश्ता बहुत फिल्मी तरीके से स्वीट नहीं बनाया गया है। यहाँ बड़े बड़े हक्स और हर सीन में इमोशनल डायलॉग्स नहीं है। इन दोनों के बीच एक हिस्ट्री है। एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ बहन अपने भाई के लिए ऑलमोस्ट पेरेंटल रोल ले चुकी है और अब अंकुर मुश्किल में फंसता है। सत्या का रिएक्शन सिंपल है, मैं उसे निकालूंगी बस, नो प्लान बी, नो इजी वे आउट। और यहीं से फिल्म एक इमोशनल सिबलिंग स्टोरी से सर्वाइवल मिशन बन जाती है। सत्या की जर्नी हमें ये दिखाती है, जब किसी अपने की बात आती है ना तो इंसान अपनी लिमिट्स कितनी दूर तक पुश कर सकता है। और शायद इसी वजह से जिगरा राखी के लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच बनती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का, लौट कर बात करेंगे आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस के बारे में।

हाई, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स है, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट खिलाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है, देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ। अब बात करते हैं जिगरा की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स आलिया भट्ट एस सत्या। सत्या कोई कन्वेंशनल हीरोइन नहीं है, वो वल्नरेबल भी है, एंग्री भी है, स्कैर्ड भी है, लेकिन जब भाई की बात आती है तो उसका फियर पीछे चला जाता है। आलिया का परफॉर्मेंस इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर टिकता है। वो हर सीन में लाउड नहीं होती, कई मोमेंट्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि उनके कैरेक्टर के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है। विदांग रैना भी अंगूर के रूप में उस वल्नरेबिलिटी को बैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज नहीं करती, बल्कि उसे कॉम्प्लिकेटेड, प्रोटेक्टिव और इमोशनली मेसी रहने देती है, क्योंकि असली भाई बहन का रिश्ता भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर आप एक दूसरे को इरिटेट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, महीनों बात ना करें, लेकिन किसी क्राइसिस में सवाल नहीं पूछा जाता तुम डिजर्व करते हो या नहीं, बस साथ खड़े हो जाते हो। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वक्त है गाने का। अब हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जिगरा के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट। सबवीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं आपके साथ गीत हूँ। अब जिगरा को देते हैं हमारा फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राखी फैमिली एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो जिगरा शायद वैसी फिल्म नहीं है। लेकिन अगर आप सिबलिंग बॉन्ड को थोड़ा इंटेंस, डार्क और एक्शन पैक्ड तरीके से देखना चाहते हैं, देन दिस वन डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। फिल्म का इमोशनल आइडिया स्ट्रॉन्ग है। एक बहन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ती। कुछ पोर्शंस आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे, कुछ जगह पेसिंग थोड़ी अनइवन महसूस हो सकती है, लेकिन सत्या का डिटर्मिनेशन फिल्म को कैरी करता है। मेरे लिए जिगरा की सबसे बड़ी जीत ही इसका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई बहन की रक्षा करेगा, कभी बहन भी लड़ सकती है, तो चिंता मत कर मैं हूं ना ये भी कह सकती है। और ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है। स्टे ट्यून्ड, वक्त है गाने का। रिव्यू अड्डा के तीसरे घंटे में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जहां भाई बहन सिर्फ सिबलिंग नहीं बल्कि एक दूसरे के बिगेस्ट एलाइज भी हैं। तो वक्त गाने का है।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अब तक हमने जाना है, एक भाई अपनी चार बहनों की जिंदगी को लेकर परेशान है और एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है। अब तीसरे घंटे चलते हैं एक लग्जरी क्रूज पर, लेकिन बिलीव मी यहाँ भी फैमिली ड्रामा की कमी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जोया अख्तर की दिल धड़कने दो, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा प्ले सिबलिंग कबीर और आयशा, और इन दोनों का बॉन्ड शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे मॉडर्न वर्जन है। नो मैं तेरा प्रोटेक्टर, तू मेरी प्रिंसेस, नॉनसेंस। ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट, पार्टनर इन क्राइम और रियलिटी चेक्स हैं, और इसी वजह से ये फिल्म रक्षाबंधन स्पेशल के लिए इंटरेस्टिंग चॉइस बन जाती है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है रिव्यू अड्डा।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं गीत आपके साथ हूँ और अब बात करते हैं कबीर और आयशा की फिल्म दिल धड़कने दो के बारे में। ये शायद उन भाई बहनों में से एक हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल हम जैसे हैं, फाइट है, सरकाजम है, एक दूसरे की खिंचाई है, लेकिन साथ ही साथ एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग भी है। आयशा अपनी पर्सनल लाइफ में स्टक है और कबीर खुद अपनी आइडेंटिटी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच उलझा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, जब पूरी फैमिली आयशा को समझ नहीं पाती, कबीर उसकी साइड को समझता है, और जब कबीर खुद कंफ्यूज्ड होता है, आयशा उसे रियलिटी चेक देती है। यानी ये रिश्ता प्रोटेक्शन से ज्यादा सपोर्ट पर बेस्ड है, और शायद आज की जेनरेशन के लिए रक्षाबंधन का यही सबसे रिलेटेबल वर्जन है। हर भाई को अपने बहन की लड़ाई खुद नहीं लड़नी होती, कभी कभी बस इतना कह देना काफी होता है, व्हाटएवर हैपेंस आई हैव गॉट यू बैक। स्टे ट्यून, गाने का वक्त है, वापस लौटेंगे परफॉर्मेंसेस और केमिस्ट्री के बारे में।

0: मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इज मदर्स मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग कि माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में, वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: देगी बिना फिल्टर
1: सच वाला रिव्यू,
0: यही है रिव्यू अड्डा
1: सिर्फ आरजे गीत के साथ।
2: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ और हम बात कर रहे हैं फिल्म दिल धड़कने दो के बारे में। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की सिबलिंग केमिस्ट्री इस फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट चीजों में से एक है। इनका बॉन्ड स्क्रिप्टेड भाई बहन जैसा कम और जेन्युइनली लिव्ड इन रिलेशनशिप जैसा लगता है। रणवीर का जो कबीर है वो प्रिविलेज्ड फैमिली का बेटा है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसकी जिंदगी है क्या। प्रियंका की आयशा इमोशनली मैच्योर दिखती है, लेकिन उसकी ओन लाइफ में परफेक्टली सॉर्टेड नहीं है, और यही चीज इस रिलेशनशिप को रियल बनाती है। क्योंकि भाई बहन हमेशा एक दूसरे के सेवियर नहीं होते, कभी कभी खुद मेस्ड अप होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और यही दिल धड़कने दो का सिबलिंग बॉन्ड है। लेस मेलोड्रामा मोर अंडरस्टैंडिंग। राखी के ओकेजन पर अगर आप एक ऐसी फिल्म चाहते हैं जिसमें भाई बहन की रिलेशनशिप मॉडर्न, फनी और इमोशनली लेयर्ड लगे, दिस वन डेफिनेटली डिजर्व अ वॉच। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का। अगला लिंक होगा फाइनल वर्डिक्ट का, तो कहीं जाइएगा नहीं।

सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: ग्रीन लोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

सैक्रिफाइस। जुगला ने दिखाया प्रोटेक्शन की पावर, लेकिन इस बार बहन बनी भाई की शील्ड। और दिल धड़कने दो ने दिखाया एक मॉडर्न सिबलिंग रिलेशनशिप, जहां भाई बहन एक दूसरे के प्रोटेक्टर से ज्यादा पार्टनर्स और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तीनों फिल्म की स्टोरीज अलग हैं, ट्रीटमेंट अलग है, इमोशन अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, भाई बहन कितने भी बड़े हो जाएं, उनके बीच का एक हिस्सा हमेशा बच्चा रहता है। वो बचपन की लड़ाइयां, रिमोट के लिए फाइट्स, एक दूसरे की शिकायतें, मम्मी पापा से चुगली और फिर उसी इंसान के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला प्यार। शायद इसीलिए राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, इट्स अ रिमाइंडर। लाइफ चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मेरा एक इंसान जो हमेशा मेरी साइड पर रहेगा। तो आज के रिव्यू अड्डा रक्षाबंधन स्पेशल में मेरी तरफ से तीनों फिल्मों का वर्डिक्ट यही है, अगर आपको प्योर फैमिली इमोशन चाहिए देन रक्षाबंधन, अगर आपको चाहिए इंटेंस सिबलिंग लव प्लस एक्शन देन जिगरा, और अगर चाहिए मॉडर्न रियल रिलेटेबल ब्रदर सिस्टर केमिस्ट्री देन दिल धड़कने दो। मैं आपके साथ गीत हूं और ये था रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 99.6 पर। तो अब मुझे दीजिए आज के लिए परमिशन, लेकिन जाने से पहले अपने भाई या बहन को एक कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू तो हम हर वीकेंड करेंगे, लेकिन कुछ रिश्तों को रिव्यू की नहीं बस एक आई एम देयर फॉर यू की जरूरत होती है। स्टे ट्यून्ड, गाने का वक्त है। रिव्यू अड्डा में मैं आपके साथ गीत थी, साइनिंग ऑफ।

0: तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां किसी मुलाकात से नहीं, एक आवाज से शुरू होती हैं। एक ऐसी आवाज जिसे हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ना जाने क्यों सुनते ही लगता है जैसे ये आवाज पहले से ही हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा रही हो। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और ले जाने आई हूँ आपको अपनी कहानियों की दुनिया में। आज की मेरी कहानी का नाम है द कॉल सेंटर। सोचिए, अगर किसी अनजान नंबर से आई एक नॉर्मल सी कॉल आपके दिन का सबसे सुकून भरा पल बन जाए, तो क्या आप उस कॉल का इंतजार नहीं करने लगेंगे? और अगर वही आवाज अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो क्या आपको एहसास होगा कि आप सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि अपने किसी बहुत खास एहसास को खो रहे हैं? ये कहानी कुछ ऐसी ही अनकही बातों की, कुछ अधूरी मुलाकातों की और कुछ ऐसे इंतजार की है जिसका किसी को पता नहीं था, और एक ऐसे रिश्ते की जिसे शायद नाम की जरूरत भी नहीं थी। इस कहानी में बारिश भी है, अस्पताल की खामोशी भी, जिंदगी की मजबूरियां भी, और दो ऐसे लोग भी जो एक दूसरे से दूर होकर भी ना जाने कब एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल शायद ये है कि क्या हर रिश्ता मिलने के बाद शुरू होता है, या कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में सिर्फ एक आवाज बनकर आता है और वही आवाज हमें अंदर से बदल देती है। तो चलिए आज सुनाती हूँ आपको एक आवाज की कहानी जहां एक शिकायत सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

0: Hello, sir. Namita this side. How can I help you?
1: दिल्ली की बारिश हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी वो सड़कों की धूल धोती है, तो कभी पेड़ों की थकी हुई पत्तियों को चमका देती है, और कभी कभी किसी ऐसे इंसान की याद दिला देती है जिससे हमारा मिलना शायद कभी लिखा ही नहीं होता। दिल्ली में उस शाम भी बारिश हो रही थी और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर एक जरूरी प्रेजेंटेशन खुली हुई थी। सामने बॉस की नाराजगी थी और कानों में लगातार आती एक ही शिकायत, नेटवर्क फिर से चला गया था। पिछले 15 दिनों से यही तो हो रहा था। कॉल शुरू होती, कुछ मिनट चलती और फिर अचानक कट जाती। एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी नौकरी, उसकी मीटिंग्स, उसके क्लाइंट्स, सब कुछ इंटरनेट पर ही टिका था। उस दिन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग बीच में कट गई। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई और फिर बॉस की आवाज आई, मिस्टर सिद्धार्थ, दिस इज गेटिंग एम्बैरेसिंग नाउ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो बस अपना लैपटॉप बंद किया और सिर कुर्सी के पीछे टिकाकर मोबाइल उठा लिया। गुस्से में उसने नेटवर्क कंपनी की ऐप खोली और शिकायत दर्ज की। उसे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस शिकायत को वो अपनी परेशानी का सॉल्यूशन समझकर दर्ज करा रहा है, वही शिकायत कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग बनने वाला है। उसे कोई ऐसा मिलने वाला है जिसकी उसे कभी तलाश भी नहीं थी। कौन था ये? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

सिद्धार्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, पर आजकल उसकी हर कॉल ड्रॉप हो रही थी, जिससे परेशान होकर उसने नेटवर्क कंपनी की ऐप खोली और शिकायत दर्ज कराना चाहा, पर उसे नहीं पता था कि जो आवाज उसके कानों में अब पड़ने वाली थी, वो आवाज उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एहसास बनने वाली थी। रात करीब 8:30 बजे फोन बजा, अनजान नंबर था। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए कॉल उठाई। हेलो, हूज दिस? दूसरी तरफ से एक आवाज आई। हेलो सर, दिस इज नमिता दिस साइड। आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, ना बहुत मीठी और ना ही बहुत फॉर्मल, बस एक ऐसी आवाज जिसमें अजीब सी शांति थी। उसने बताया कि वो कस्टमर केयर से बोल रही है और सिद्धार्थ की शिकायत उसके सामने खुली हुई है। सिद्धार्थ ने अपनी सारी भड़ास उस अनजान लड़की पर निकाल दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बहस नहीं हुई, ना कोई सफाई और ना ही कोई बनावटी सहानुभूति। नमिता बस सुनती रही। 7 मिनट, पूरे 7 मिनट सिद्धार्थ बोलता रहा और वो बस सुनती रही। शायद उस रात पहली बार सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि इंसान को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे सिर्फ ये भरोसा चाहिए होता है कि कोई उसकी बात पूरी होने तक उसके साथ रहेगा। कॉल खत्म होने से पहले नमिता ने कहा कि वो शिकायत की पूरी हिस्ट्री नोट कर रही है और उसे दोबारा अपनी समस्या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते ही फोन कट गया। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। अगली बार उसी नंबर से फोन आया। नमिता सिर्फ ये जानना चाहती थी कि नेटवर्क अब ठीक हुआ या नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ अब ठीक है। कॉल खत्म ही होने वाली थी कि अचानक सिद्धार्थ ने नमिता को रोक दिया। कल इतनी शांति से मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर नमिता ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर आज पूरे दिन में ये पहला थैंक यू मिला है। और फोन कट गया। और शायद उसी पल दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बंध गया था, जिसे कोई नाम देने की जरूरत थी नहीं।

तब सिद्धार्थ की नेटवर्क की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी थी। ये प्रॉब्लम थी सिद्धार्थ के दिल की, क्योंकि अब वो चाहता था कि वही आवाज जो उसने फोन पर सुनी थी वो आवाज एक बार फिर से सुनाई दे जाए। शाम के 7:05 थे और प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन करीब 10 दिन बाद सिद्धार्थ ने फिर कंप्लेन दर्ज करवाई। इस बार नेटवर्क में कोई खराबी नहीं थी, असल खराबी कहीं और थी। उसे उस आवाज की आदत जो लग गई थी। शाम के लगभग 7:05 पर शिकायत दर्ज कराना और फिर इंतजार करना कि शायद वही लड़की फोन उठाए। नमिता ने भी ये बात समझ ली थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत में टेक्निकल शब्द कम होने लगे और जिंदगी के छोटे छोटे किस्से बढ़ने लगे। उसे पता चला कि नमिता जयपुर में रहती है और वो वर्क फ्रॉम होम करती है, क्योंकि उसके पिताजी पार्किंसन से जूझ रहे हैं, इसलिए वो अपने काम के साथ साथ अपने पिता को भी संभालती है। और दूसरी तरफ नमिता को पता चला कि सिद्धार्थ दिल्ली में अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ अक्सर उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। दोनों ने कभी एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया, ना कोई निजी तस्वीर मांगी, ना कोई सोशल मीडिया आईडी, और ना कोई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस हर दिन के शोर में 2 मिनट की एक छोटी सी जगह थी जहाँ दोनों कुछ देर इंसान बनकर रह सकते थे, लेकिन फोन की दूसरी तरफ बैठा इंसान अक्सर अपनी पूरी कहानी नहीं बताता। वो सिर्फ अपनी आवाज भेजता है और आवाज के पीछे एक पूरी जिंदगी छिपी होती है, और इस जिंदगी के कई पहलुओं से पर्दा उठाऊंगी। पर इसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि

एक शाम नमिता की आवाज कुछ बदली हुई थी। सिद्धार्थ ने कुछ पूछने से पहले ही समझ लिया कि कुछ हुआ है। नमिता का प्रमोशन हो गया था और अब वो बैकएंड टीम में जाने वाली थी। इसका मतलब ये था कि अब वो कॉल नहीं लेगी, यानी उसकी रोज की बातचीत खत्म। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा। जिस आवाज को उसने कभी देखा तक नहीं था, उसके चले जाने का ख्याल इतना खाली क्यों कर रहा था सिद्धार्थ को? नमिता ने हंस कर कहा, अब झूठी शिकायतें मत दर्ज कराइएगा। सिद्धार्थ को उस समय पहली बार पता चला उसकी सारी शिकायतें नकली थी। ये बात नमिता पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि इंजीनियर की रिपोर्ट हर बार कहती थी नो इशू फाउंड, लेकिन शिकायतें हर दिन ठीक 7:05 पर ही आती थीं। नमिता ने कभी उसका राज नहीं खोला। शायद वो जानती थी कि कुछ झूठ सच से ज्यादा मासूम होते हैं। आखिरी बार फोन रखते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखिएगा सो, और कॉल कट गई। बारिश उस रात बहुत तेज थी। सिद्धार्थ ने मोबाइल मेज पर रख दिया और देर तक उसे देखता रहा। उस दिन उसे मालूम हुआ कि कुछ आवाजें फोन कटने के बाद भी हमारे भीतर बजती रहती हैं। एक एक करके दिन जाता रहा, दिन हफ्ते में, हफ्ते महीने में बदल गए, और ऐसा करते करते पूरे 8 महीने बीत गए। और फिर एक दिन क्या हुआ, ये जानने के लिए बनी रहिए मेरे साथ।

महीने बीत चुके थे और आज भी सिद्धार्थ उसी आवाज को सुनने के लिए हर रोज अपने फोन की ओर देखता था, वो भी ठीक शाम 7:05, क्योंकि उसे लगता था कि कोई है जो उसकी टेक्निकल नहीं बल्कि पर्सनल शिकायतें भी सुनना चाहता है। पर यह अलग बात है कि सिद्धार्थ ने कभी दोबारा शिकायत नहीं की, लेकिन जब भी कोई अनजान नंबर आता उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता। हर बार कोई बैंक वाला निकलता या फिर कोई बीमा बेचने वाला, और वो मुस्कुरा देता। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है, ऑफिस, मीटिंग्स, घर, माँ की दवाइयाँ, रविवार का मंदिर और बैल्कनी में बैठकर बारिश देखना। लेकिन जिंदगी को शायद एक कहानी तब तक पूरी नहीं लगती जब तक वो अपने सबसे जरूरी पात्रों को दोबारा आमने सामने ना खड़ा कर दे। एक रविवार मंदिर से लौटते समय सिद्धार्थ की माँ अचानक सीढ़ी से गिर पड़ी। कुछ ही देर में वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हल्का स्ट्रोक आया था। अगले 24 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट थे। सिद्धार्थ पूरी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा रहा। वो मजबूत बनने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल की सफेद दीवारों के बीच इंसान जितना भी मजबूत हो, अपनों की बीमारी के सामने अंदर से बच्चा ही रह जाता है। वो सारी रात उसी कॉरिडोर में बैठा रहा था, इसलिए सुबह उठकर कैंटीन की ओर गया, लेकिन कैंटीन अभी बंद थी। उसे बहुत प्यास लगी थी, तभी किसी ने उसके सामने पानी की बोतल बढ़ाई। लीजिए, पानी पी लीजिए। सिद्धार्थ ने बोतल की तरफ नहीं देखा, उसने आवाज सुनी और जैसे 8 महीने का समय अचानक मिट गया। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नमिता।

0: इंतजार की।
1: सिद्धार्थ को किसी ने पानी की बोतल ऑफर की, लीजिए पानी पी लीजिए। ये आवाज सुनकर सिद्धार्थ पूरी तरह से चौंक गया और उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नमिता। सामने खड़ी लड़की ठिठक गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। 8 महीने, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों कॉल्स और पहली बार चेहरा सामने था। और अजीब बात तो ये थी कि चेहरे ने पहचान नहीं कराई, आवाज नहीं कराई थी। सिद्धार्थ मुस्कुराया, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था, फिर भी पहचान लिया। नमिता की आंखों में भी मुस्कान उतर आई। उसने कहा, मैंने भी, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी दो शब्द पूरी कहानी कह देते हैं। उस दिन पता चला कि नमिता अपने पिताजी को फिजियोथेरेपी के लिए उसी हॉस्पिटल में लाई थी जहां सिद्धार्थ की माँ आईसीयू में थी। नमिता के पापा हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में थे। दोनों की जिंदगी अलग थी, उनकी परेशानियां अलग थी, लेकिन उस सुबह दोनों के हाथों में एक जैसी चिंता थी। और शायद यही वो चीज थी जिसने उन्हें पहली बार सचमुच करीब ला खड़ा किया था। वो आधे घंटे तक हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे, ना कोई पुरानी शिकायत, ना कोई प्रेम की बात और ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग। सिर्फ दो इंसान जो अपने अपने बीमार माता पिता के बीच थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने बैठ गए थे। उसके बाद एक अजीब सी आदत बन गई, हर बुधवार अगर दोनों हॉस्पिटल में होते तो उसी कैंटीन में मिलते। कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, कोई वादा नहीं। अगर दोनों आ गए तो चाय, और अगर कोई नहीं आया तो अगला बुधवार। शायद कुछ रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि वो अधिकार नहीं मांगते, वो बस जगह मांगते हैं। एक छोटी सी जगह जहां कोई आपको बदलने की कोशिश ना करे।

हर बुधवार नमिता और सिद्धार्थ हॉस्पिटल में मिला करते थे और एक कप चाय उनकी पूरी जिंदगी बन जाती थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ को पता चला कि नमिता कितनी थकी हुई जिंदगी जी रही थी। रात में नौकरी, दिन में पापा की देखभाल, दवाइयां, फिजियोथेरेपी, घर का खर्च और इन सब के बीच एक जैसी मुस्कान जो शायद दूसरों को देने के लिए बचा कर रखी गई थी। और एक बुधवार नमिता ने उसे बताया कि कस्टमर केयर की नौकरी में सबसे मुश्किल चीज गुस्से वाले कस्टमर्स नहीं होते, सबसे मुश्किल होता है अपना दुख छिपाकर किसी और की शिकायत सुनना। उसने बताया कि जिस दिन सिद्धार्थ की पहली शिकायत आई थी, उससे कुछ घंटे पहले उसके पिता पहली बार बिना सहारे चल नहीं पाए थे। वो पूरी रात रोई थी, लेकिन सुबह उसे फिर से हेडसेट लगा कर वही कहना था, हेलो सर, दिस इज नमिता दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। सिद्धार्थ बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया कि नमिता ने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम ही नहीं सुनी थी, वो खुद टूटे होने के बावजूद किसी दूसरे टूटे इंसान के लिए कुछ मिनटों की जगह बना रही थी। फिर जिंदगी ने एक और नया मोड़ लिया। एक बुधवार नमिता नहीं आई। सिद्धार्थ ने सोचा शायद पापा की तबीयत खराब होगी। अगले बुधवार भी वो नहीं आई। तीसरे बुधवार उसने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पूछताछ की तो पता चला कि नमिता के पिता की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें दूसरे शहर के हॉस्पिटल ले जाया गया है। सिद्धार्थ ने कोई फोन नहीं किया, उसने सिर्फ इंतजार किया। वो नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात फिर कभी नमिता से होगी या नहीं, पर क्योंकि वो जान चुका था कि कुछ रिश्तों में चिंता जताने से ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले की चुप्पी का सम्मान करना, इसलिए उसने नमिता को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। करीब 3 हफ्ते बीत गए थे और इस बुधवार नमिता वापस लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे गहरे निशान थे और हाथ में वही पुराना फोन। वो चुपचाप सिद्धार्थ के सामने आकर बैठ गई और सिद्धार्थ ने भी कुछ नहीं पूछा, बस चाय उसकी तरफ सरका दी। कुछ देर बाद नमिता ने कहा, पापा चले गए। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, उसने बस कहा, मुझे पता था तुम वापस आओगी। नमिता ने उसकी तरफ देखा, शायद उसे पहली बार किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके दुख को ठीक करने की कोशिश ना करे, सिर्फ उसके साथ बैठे। और उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप रहे। कभी कभी प्यार की सबसे सच्ची भाषा चुप्पी होती है। समय आगे बढ़ता गया। सिद्धार्थ की माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। नमिता ने अपने पापा के जाने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अब जिंदगी सिर्फ खाली कमरों और दवाइयों की याद बन जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कोई सहानुभूति भी नहीं दी थी, बल्कि उसने नमिता को सिर्फ एक बात समझाई, तुमने इतने लोगों की आवाज सुनी है, अब अपनी आवाज भी सुनो। नमिता ने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया। उसने कस्टमर केयर की नौकरी छोड़कर एक छोटी सी ऑनलाइन काउंसलिंग और सपोर्ट टीम शुरू की। ऐसी टीम जहां कॉल करने वाले लोगों को सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब नहीं दिया जाता था, उन्हें सुना जाता था, क्योंकि नमिता जानती थी हर कॉल के पीछे सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कोई अकेला भी होता है, कोई डरा हुआ होता है,
कभी कोई गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं और नहीं रो पा रहा, और कभी कभी कोई सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता है।

एक साल बाद शाम के 7:05 थे। बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ अपनी बैल्कनी में खड़ा था। मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो मुस्कुराया। नमिता। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई। हेलो सर, दिस इज नमिता दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? सिद्धार्थ हंस पड़ा। अब भी सर? नमिता ने कहा, कुछ रिश्तों की शुरुआत बदल जाती है, लेकिन कुछ संबोधन नहीं। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर सिद्धार्थ ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, नमिता, अगर उस दिन मेरा नेटवर्क खराब नहीं होता तो? ये कहकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी कनेक्शन कभी नहीं बनता। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर की खामोशी रही और फिर नमिता की आवाज आई, कभी कभी भगवान भी नेटवर्क की तरह होते हैं, मतलब कनेक्शन दिखता नहीं लेकिन सही समय पर कॉल जरूर जोड़ देते हैं। दोनों हंस पड़े और उस शाम सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपना अर्थ बन जाते हैं। कहते हैं दुनिया में हर रोज लाखों फोन कॉल होती हैं। कुछ कॉल्स 5 सेकंड में खत्म हो जाती हैं और कुछ 5 मिनट में, कुछ सिर्फ एक

कभी एक कप चाय के साथ, कभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, कभी बारिश की आवाज के बीच, और कभी एक साधारण से सेंटेंस से, और कभी एक नॉर्मल सी आवाज से। हेलो सर, दिस इज नमिता दिस साइड। क्योंकि जिंदगी में कुछ कॉल गलत नंबर पर नहीं आती, वो बिल्कुल सही समय पर आती हैं। और जब आती हैं तो हमें सिर्फ फोन नहीं उठाना चाहिए, कभी कभी दिल भी उठाकर देख लेना चाहिए।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़

0: से स्ट्रॉन्ग बहाना, जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए

0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
1: पुष्पा, I hate water wasting रे। जा, जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्षमाशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है। पहली नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
1: सहरा से जाके घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
2: क्या?
1: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
0: राजश्री की पिक्चर में ड्रामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कहती है
1: कुड़ी मैनू
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
2: है तो टेढ़ी मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें सीधी।
1: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट से मिले।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: श्री गुण कृपया ध्यान दें, ये चिकन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: जिनके कंधों पर बचपन बीता, अब छह बूढ़े कंधों को कभी न मत छोड़ो।
2: उम्र के साथ चले, यूनियन के चादर,
1: क्योंकि उनका साथ हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। लोग ये छुट्टी कह रहे थे, उसको कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। तो बी कॉन्फिडेंट।

0: जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है और हम हर दिन पूरी बेहतर बनते जाते हैं। 2025 को थैंक्स और 2024 को वेलकम। चलिए नए गोल्स, नई एनर्जी और फ्रेश माइंड सेट के साथ 2025 में कदम रखें।
1: महारानी
0: प्रोग्राम ऑर्गेनाइज पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल न्यू ईयर 2026।

0: गानों में है अपनी वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का हिस्सा। अभी जो भी सुने यही बोले, ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो केंद्र महारानी 89.6 FM। कुछ
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
0: प्यार का तो पता नहीं, प्यार के चर्चे हर जबान पर है।
2: सुने क्या करता है यार, उसने इतनी चलाकी से कौन से अच्छा धाका देकर फोटो भी निकाल लिया, उसे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप कहीं भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आई लिंक पर क्लिक न करें। बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर चाहे कॉल पर भरोसा न करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होगी, इसलिए पहले टेक्स्ट को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। 10 से 20 से बी अवेयर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो बहरानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: होके शुरू तो अर्ज किया है अर्ज कर रहा हूँ तो सुन रहा हूँ अरे आगे खाली हो जाएगी
1: क्या
0: बोल करिए सारी भीड़ अंदर बुला लेते
1: हैं
0: रोडवेज वाले रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बैठा ले
1: अरे यार उसको तो गोली गाकर चला भी रहे थे
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल लक्ष्य बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर रह जाते
1: हैं दिमाग से दही हो रखा है और ऊपर से तू भी मैं तो चलिए तुम बोल रहा है
0: सुनो
1: बाय।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज क्या है? अभी करते हैं। स्पैम कॉल करके आजकल जमा कर रहे हैं।
0: बाबा बाबा,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें जान देते हैं।
0: तुम अभी इसे लाए?
1: चलो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायद सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहले फुर्सत में फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का खुद को फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, शांत हो गए।
3: ये है रेडियो महानी का क्विक रिमाइंडर।
4: ज्यादा चिल्लाने की बात समझाई नहीं जाती, फिर दिल दूर हो जाते
5: हैं।
4: आज से ही आवाज़ सुनी और बात चली, फिर देखती है जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: दृश्य होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्रॉप मैसेज में सेव हो जाते हैं जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अंतर रह जाती है तो कभी मोहब्बत अंग्रेज, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी। दोस्तों की आर जगीत के साथ रिश्तों का पॉडकास्ट, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्यूएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हंसी में।

0: यात्रीगण अच्छा ध्यान दे, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 22 हो या हो 20, हर मित्र रेडियो महारानी के साथ आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ठीक है तुमसे। अचूत का नाम याद रखना, अगर वो खो गया कहीं तो तुम भी इश्क सलामत रखना।
1: रात है यादों के अफसाने सुनाने की, दिल के छुपे जज्बात जगाने की, उन जज्बातों को महसूस करने के लिए सही है हमारे साथ। रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ।
2: मेरी जान की चाह तुम
3: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
4: अरे आगे भी बोलना।
3: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो में धार मिलोगे।
0: इस 9.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रॉनी ब्रॉनी जिसका था भाई चुराना है किसका था मैंने पहनना है और किसका था भाई पीछे गाड़ी चलाओगे नो पापा यू आर वेरी गुड बच्चा भाई सीट में गाड़ी चलाने से बड़ा है दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट बेहद जरूरी
1: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में चल रही
2: वेलकम न्यू ईयर 2020
3: बदले तेरे

0: नींद छोड़ने का मन नहीं, लेकिन लाइन भी तो धीमी है,
1: उठने का दिल नहीं करता, पर बॉस की आंखें भी तो अच्छी आंखें घूरती है।
0: पर टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ द मॉर्निंग एक्सप्रेस है जो आपकी सुबह का लोडिंग बार 100% पहुँचाएगा।
1: तो बिस्तर की सुविधाओं का चेक करो, वीडियो का वॉल्यूम बढ़ाओ और एनर्जी का गियर बदल कर दिन की शुरुआत करो, क्योंकि एक परफेक्ट सुबह का स्टेशन एक ही है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराइए, जरा आप मुस्कुराइए,
1: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
2: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड़ सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

ते अख संग दी रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी दिल तैनु चुमदा ते अख संग दी मुल केड़ा पाया वे तू साडे प्यार दा हर वेले तेरियां मैं खैरा मंगनी साडे पैरां विच बेड़ियां पाके साडे पैरां विच बेड़ियां पाके ते खौरे माही

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।